से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहाँ जा रहे हो? माताओं बहनों का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पतिदेव किसी काम से बाहर निकले ना तो भले बात नहीं करेंगे लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो? अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना, तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले, कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोले, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा? नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को। ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो, जो ब्याह पे आप ऐसे आए हो, मेरे माता पिता ने आपको ऐसे ही ब्याह दिया। क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी है, ब्याह में देवताओं ने खूब कहा महाराज थोड़ा आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए। जैसे कैसे कर लेंगे, किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटका है। बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के जाएंगे। नंदी पे बैठ गए और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके और बारात लेके जा रहे। देवताओं ने सोचा कि अजीब, ये तो शंभू है, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बारात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते हैं, और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा? भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए बारात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है, कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के चार चार हाथ हैं, किसी के 10-10 पांव हैं।

दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बरातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता लगा, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले, नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली, जब दास इतना सुंदर सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा। तो बोले, चिंता मत करो, आ ही रहे, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव। फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई मैना जी कि दामाद जी आ गए। दामे बोले, ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा, अब तो बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख लें, कैसे दामाद जी। नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें, नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बारात हुई चालू, डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले, दामाद जी कहाँ है? बोले, दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कही, उतरे तो सही। दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या, अब भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं, माता जी कौन है? अरे माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले, सासू कौन सा पदार्थ होता है? ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता, आपको इन्हीं से लेना देना है, आगे यही अपनी छोरी देंगे, अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं, आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी, चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता, बाबा जी एक प्रार्थना है, कहूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले, हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी, छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने, तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तुम्हारा उससे तो कोई लाभ नहीं है। बाबा भोलेनाथ बोले, वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहन के, और बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा, दासी को कहा, अरी जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई, जाके देखा, बोला मैया एक ऐसो बाबा जी आयो, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखियो होगो मैया तेने, ना कभी देखेगी, ऐसो कौन सो बाबा जी आगो। बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई, बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहाँ थे पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर से आए हैं, हिमालय की गुफा में थे आए। अच्छा बाबा जी कहाँ लोगे, भोजन पाओगे कि सोना लोगे कि चांदी लोगे, कहाँ लोगे? बोले अरे मैया, तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है,
अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा

तेरे लाला को दर्शन करने आयो मैं तेरे, हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। भैया ने कही कहा बाबा आपके कहियो कहा मांगने आयो तू? बोले भैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो को दे दो, तू कहेगो मुकू मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है डर लग रहे है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी? इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर? तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूरो उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो? अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊ मैया आगे भविष्य में चल के तो वो 100 पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो। सांप तो वाके वश में रहे। भैया बोली बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है के सांपन पे नाचे वो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहां तू आयो है, जहां लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे हंसे बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गया। बाबा बोले नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो। मैया बोली या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। मैया बोली देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटीली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले कब तक नहीं कराएगी? कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार हैं, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल वालन को घरन में ही बुला लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को ब्याह तो करेगी? ब्याह करेगी, छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली छोरा कुआरो रख लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले बड़ी हटीली अम्मा है यू, हम तो सोचे हम ही है जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम्हें हम भी यही बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहां से हटेंगे नहीं। मैया बोली बैठो रे, मैं अपनो काम धंधो संभाल। और मैया भीतर चली। भोलेनाथ जी ने सोचा कि तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मनी मन ठाकुर जी को कहते अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते, अब तो 4 दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहे। बोले क्या?
मतलब रोना आरंभ कर। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते हैं, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज आई तो आवाज बाहर गई, अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आई। अरे मैया कहा कर रही है, तो को तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली गोपी कहा करो, बोले रो रहे हो है तो याकू कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झनझनझन इलाई, तब भी चुप नहीं हुए। मैया ने पल्ला में झुलाए, तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे। गोपी बोली मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे काई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो, मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई। मैया बोली अब कहा करे, बोले कहा करे का नजर उतारो या की, बोले कैसे नजर उतारे, बोले जा रसोई ते वो लेके आ राई नून लेके आ भीतर। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी, अब नजर उतारने के बाद तो काना कम रोने चाहिए, पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे, ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है, बोली मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहाँ है। मैया बोली कहाँ बीमारी है, बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का, बोले मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई, और मैया अब आप भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी, बोले मैं थोड़ी उतारूंगी, वाकई यहाँ तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगा वो भूत उतारे हो। तो गोपी अब कौन को बुला के लाए, मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले मैया टेंशन मतलब मैं हूं ना, अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ धूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी नजदीक गई, बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है, तो जाके पूछी बाबा एक बात बताओ तुमको भूत उतारने आते हैं। बाबा बोले पहले ये बताओ किसको चढ़े, उस पे डिपेंड करता है। बोले हमारी मैया है ना वह को लाला है, चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारवे वारो कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले हाँ, मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका अब तुम भी कर दो। बाबा जी बोले अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते। अरे गोपी मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है, अभी लेके आए एक चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। वो पिराजी हो गई और खुश होती होती मैया, ओ मैया बाबा जी मिल गयो, भूत उतार देगो एक मंत्र पढ़ोगे और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी, बोले मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यही तेरे आंगन में बैठो। मैया बोले ले
कराई काम खराब। मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, और तू आकू जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको? गोपी बोली, मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाओ। अब तो कु बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो, बता। भैया बोली, मोकु तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत दूर जाके ठाड़ी है जाइयो। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया, कहीं छोरा को बड़ी भोली है मैया, बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है, वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा, और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। क्या बोली, लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी, और नजदीक जाने की, और नजदीक चली गई बाबा के, और पास गई और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है, बाबा ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे छोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली, ऐसे कैसे उतर गए? जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला, और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र भंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया, और राधा बोलते ही श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दी, जोर से हंस दी। भैया बोली, हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहा, हंसन लगे। मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छा बाबा एक बात बता, भूत तो पे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे, भविष्य बतानो आवे? मैया ना ऐसी होती है, एक काम में 10 काम करना चाहती है। कोई एक आयोजन हो, एक कार्यक्रम हो, उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले, क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले, लाला को देखनो। बोले, वाके ताई तो लाला को मेरी गोद में देनो पड़ेगो। मैया बोली, ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले, तो ठीक है मत दो, हम चलते हैं। बोले, ना ना ना ना बाबा, रुक जा, तेरी गोद में दे दूंगी, पर देख बाबा जरा संभाल के, अपने नागन्ने ने थोड़ा संवार के रख, समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले, मैया अरे यशोदा मैया, तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने, मैया तोकु पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो, मैया तोकु पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो, मैया बड़ो है के या के सोने के महल होंगे, और तो और मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली, बाबा मैंने तो को काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो, अरे राजा बनेगो, नाम रोशन करेगो, बड़ो होगो, महल बनाएगो, तो वो तो या के नहीं होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता।
बाबा बोले मैया तू बता तो को तेरे मियाँ कहाँ चाहिए। बोले मो को तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगो। बाबा बोले 4 दिन को तेरो छोरा है, अभी यहाँ पे आँख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा, अब देखना यू कालो कलूटो सो है तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देवो। तो बाबा तू ही बता, छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी, वो को रोज नए नए व्यंजन खवाएगी। और बाबा बताना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है। अरे मैया, या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब मैया तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। जैसे मैया ने सुनी तो बस वहीं खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है मैया। बोले बाबा न्यू सोच रही हूँ, अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी क्या हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी। बाबा ने कहा मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलूं, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती ना ना बाबा तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोरा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यहीं रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, 4 स्थान पर 4 रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराज

0: साथ गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सिस्टर, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है जो बहुत कॉमन शब्द इंटरनेट के जमाने पे हम सुन रहे हैं, हीलिंग। अब हीलिंग का असली मतलब क्या है, हम शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं जो सोशल मीडिया पे इधर उधर चलते रहते हैं, बट रियल और एक्चुअल मीनिंग आज मैं आपसे जानना चाहूंगा।
1: जी, जो मैं समझती हूँ इसमें सबसे पहले ही लगा है, मींस आप, उसके बाद ऑल लगा है यानी सारा। तो आप अपने आप को सारा ही बिल्कुल फ्रेश कर सके, हील मींस पूरा का पूरा ही अपने आप को अपने ठीक कर लिया है। तो हीलिंग जो शब्द है बहुत ज़्यादा डीप है, जिसमें आपको अपने हायर लेवल को भी हील करना है। हम नॉर्मली समझते हैं कि फिजिकल जो पार्ट है, चलो और डीप हम आज जाने लगे हैं, हम EQ तक पहुंच चुके हैं, इमोशनल क्वेश्चन, जिसमें लोग इमोशंस के बारे में जागरूक हो चुके हैं और इमोशंस को हील करना चाहते हैं। लेकिन इससे भी और ऊपर जाने की जरूरत है अभी हमारे समाज को, जिसमें हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात करते हैं। जहां हम स्पिरिचुअली अपने आप को हील कर लेते हैं तो फिजिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इमोशनली अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको टैकल करने में हम काफ़ी हद तक बहुत सशक्त हो चुके होंगे, एम्पावर्ड हो चुके होंगे। और इसीलिए हीलिंग जो वर्ड है ये बहुत डीप है, इसको सिर्फ हल्के में ना लीजिए।
0: थैंक यू सो मच सिस्टर, पहले तो ये टॉपिक पे इतनी ब्रीफली हमको यहाँ पर बताने के लिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया का ज्ञान है वो मुझे लगता है आधा अधूरा ज्ञान है, और जो आपने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया हीलिंग के बारे में वो एक कंप्लीट पैकेज के साथ, और जितने लिसनर्स हैं उन्हें बहुत हेल्प करेगा उनकी इस हीलिंग जर्नी में आगे। बट इससे रिलेटेड बहुत सारे और क्वेश्चन हैं जो मेरे माइंड में हैं, जो कुछ गानों के बाद, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स के बाद हम अपने लिसनर्स के सामने रखेंगे, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: मेरे ओपिनियन में स्ट्रेस की कोई भी मेडिसिन नहीं हो सकती। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। सिस्टर, स्ट्रेस और एक इमोशनल पेन, ये दो टर्म्स हम अब इंटरनेट के जमाने में या गूगल सर्च के जमाने में हम बहुत सुन रहे हैं, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है कि हमने दवाई दी और स्ट्रेस दूर हो गया, या हमने दवाई दे दी तो हमारा इमोशनल पेन जो है वो दूर हो गया। बट क्या मेडिटेशन वो टूल बन सकता है जो आपके इमोशनल पेन या स्ट्रेस को हील कर सके? क्योंकि हम हीलिंग की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये टॉपिक मेरे माइंड में आया था।
1: हीलिंग की बात करें तो बिल्कुल मेडिटेशन हमें हील करता है और ये बहुत जो कहें बेस्ट टूल है हमें हील करने का, क्योंकि जब भी बात आती है हम फिजिकली तो योगा कर लेते हैं लेकिन फिजिकली हम फिट होते ही अगर किसी ने कोई बात ऐसी कह दी तो वो हमें फील हो जाती है। अब उस फीलिंग से बचने के लिए अब हमारे को कैसे हम उससे बाहर आए, तो उसके लिए मेडिटेशन बेस्ट जो है वो टूल है कि हम उस समय पर अपने आप को कुछ ऐसी अफर्मेशन दे कि वो नेगेटिव जो बात मेरे पास आई है, जो मुझे फील हुई है, उसको हम छोड़ सके और अपनी हीलिंग की तरफ जाए। कुछ समय पहले ऐसा हुआ था, एक बहन जिसको कैंसर पेशेंट रही है वो, उन्होंने अपने, वो बहुत अच्छी डांसर रही, तो वो जब भी बैठती थी मेडिटेशन में वो ये कहते थे कि मैं अपने कैंसर के जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, उसको मैं ऐसे देखती हूँ कि ये असुर हैं और मैं देवी हूँ और मैं इनको मार रही हूँ और ये ख़त्म हो रहा है। और सच में ही उसने अपने कैंसर पर जीत पाई। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ उसके थॉट ने काम किया, लेकिन मेडिसिन भी अपना काम कर रही थी, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ उसकी जो थॉट थी, जो उसने हील के लिए प्रोसेस किया, और वो स्पेशली मेडिटेशन के ही टाइम पर जब वो मेडिटेट करती थी तभी वो अपने आप को ये थॉट देती थी कि मैं जो हूँ वो देवी हूँ और इन जो है जंप्स को असुरों की तरह मैं मार रही हूँ। वो उस चीज़ को विजुलाइज करती थी और जैसे जैसे विजुलाइजेशन थी, टाइम कम टाइम में उसने अपने आप को हील कर लिया। तो मेडिटेशन तो बेस्ट टूल है।
0: इसका एक एग्जांपल हमने शायद स्कूल की टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, एक लास्ट लीफ करके एक पोइट्री होती थी कि वो एक पेशेंट था, वो बहुत बीमार हॉस्पिटल में था, तो उसने होप छोड़ दी थी, तो एक पेंटर ने उसके बेडरूम के सामने वाली दीवार पे एक आर्टिफिशियल पत्ती बना दी थी, लीफ बना दी थी, और ये कहा था कि जब तक ये पत्ती झड़ेगी नहीं तुम नहीं मरो, और वो पत्ती कभी झड़ती नहीं क्योंकि वो पेंट था, तो इसी बहाने वो सरवाइव करके निकल आया।
1: बिल्कुल वही थॉट था जो थॉट ने उसको हील कर दिया।
0: वैसे तो देखिए, आपका जो इमोशनल पेन है या आपका जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह से कोई चीज रिलीफ नहीं कर सकती है, बट हाँ आपको थोड़े टाइम के लिए उससे दूर मेडिटेशन ले जा सकती है, जो यहाँ पर सिस्टर्स की बात से मेरे को लगा, और अगर हम उसे अपनी हैबिट बना लेंगे तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए मेडिसिन का काम भी करने लग जाए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

Hello everyone, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.

0: आज मैं एक टिपिकल ह्यूमन इमोशन या ह्यूमन नेचर की बात आपसे करने वाला हूँ। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया इस वक्त मेरे साथ हैं यहाँ पर। सिस्टर, एक हीलिंग टर्म के साथ मैंने चीज और सुनी है कि इंसान जो होता है ना, वो बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आके चीजें करने की आदत रखता है, तो हीलिंग के साथ भी सेम प्रोसेस होता है। जब वो बहुत बाल्टी में पानी ऊपर तक भर जाता है इमोशंस का, तब वो सोचता है कि नहीं, अब मैं हीलिंग को अपना लूं, बट तब तक क्या लेट हो चुका होता है? और ये हीलिंग प्रोसेस जो है वो एक इंसान की लाइफ में रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए या वन टाइम में काम हो जाता है?
1: आज कोई किसी की सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद ही भरे हुए हैं और हम उनके आगे ही जाके ड्रेन आउट हो रहे हैं, जो पहले ऑलरेडी फुल हैं उन्हीं चीजों से जिनसे हम भरे हुए हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है पहले अपने लिए एक अच्छा बेस्ट अपना फ्रेंड बन जाए, अपने आप का खुद का दोस्त बने। और दूसरा, हमें सबको, और हम सब भारत में हैं या किसी भी आप जगह पर जाके देखें तो सब जगह पर सबसे पहले गॉड को याद किया जाता है, परमात्मा को। दूसरा हीलिंग सोर्स, हमारी बातें सुनने वाला वो परमात्मा है। हम उन दोनों को छोड़ करके हम लोगों को हम सुना रहे हैं, इसीलिए आज हम शायद हीलिंग हो ही नहीं हो रही है, हमारी हीलिंग हो ही नहीं रही है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को और ज्यादा, जिसके पास भी जाते हैं वो अपनी सुनाना शुरू कर देता है, हम भी बड़े परेशान हैं, हम भी बड़े दुखी हैं, हम भी ऐसे हैं, तो वो चीज हमें और इरिटेट कर देती है। इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले अपने आप से बातें करें, अपने आप को हील करें कि नहीं, मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है, जो भी चीजें हैं मुझे वो सॉर्ट आउट करनी है। अपनी बातों को डायरी पे नोट करें, जो डायरी लिख सकते हैं वो लिखे, नहीं है तो जिसे भी आप अपने आप को ईष्ट मानते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उसके पास जा कर के अपने मन की सारी बातें कर दें, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा एक सोर्स मिलता है जो कहीं पर आपकी बात को बोलेगा भी नहीं, आपको सोल्यूशन भी उसका कहीं ना कहीं से अरेंज करके देगा। वो भले खुद नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन हमें देता है। और दूसरा, अपने आप के साथ पहले पॉजिटिव हों, हम अपने लिए नेगेटिव हैं, पहले अपने अच्छे दोस्त बने, फिर हमारे से अच्छा हीलिंग और कोई नहीं कर सकता।
0: वो एक कहावत आपने सुनी है कि एक आर्ट भी तब निखर के आती है जब आर्टिस्ट उसकी प्रैक्टिस करता है, तो सेम हीलिंग है। हीलिंग की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप सोचेंगे आप एक दिन में हील हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

अब जो बात होने वाली है ना उसे आप बिल्कुल भी स्किप या मिस नहीं कर सकते हैं, वरना तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया से मैं अब यही जानना चाहूंगा, सिस्टर आप हीलिंग प्रोसेस में या मेडिटेशन प्रोसेस में एक लंबे समय से हैं, तो क्या वो प्रो टिप्स आप अपनी तरफ से आज हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगी उनके हीलिंग जर्नी के लिए या उनकी मेडिटेशन

0: तो भाग रहे हैं, लेकिन भागते भागते भी जब हम बीमार होंगे तो क्या करेंगे? फिर रुकना पड़ेगा।
1: हाँ।
0: रुकना पड़ेगा ना। अगर हमें रुकना ही नहीं है, हम ये चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ में पॉज देना जरूरी है। और हर एक चीज़ के लिए, जैसे कोई भी बीमारी को हील करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डॉक्टर दो चीज़ देते हैं, एक मेडिसिन और दूसरा आपकी कोई ना कोई परहेज बताते हैं कि आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो सेम हमारे अगर माइंड को हमें हील करना है और बहुत तेज गति से भागना है, तो हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। वो अवॉइड क्या करना है? सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट्स को। और किन चीज़ों को लेके आना है? तो पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव कुछ भी। भागते भागते भी आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पहले तो लोग मेडिटेशन को ये सोचते हैं कि हमें शायद कहीं जाके एकांत में बैठना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें भागना पड़ेगा या हमें छोड़ना पड़ेगा या हमें अपनी डेली रूटीन लाइफ से कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मन को कुछ ऐसे थॉट देने हैं जो कि हमें हील कर सके। इस चीज़ को सभी लिसनर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि सब लिसनर्स सुबह उठते ही अपने लिए कुछ पांच अच्छी बातें बोलें। वो है कि आप एक पावरफुल सोल है, आप वो कर सकते हैं, पहला थॉट। दूसरा, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये थॉट मुझे उस काम को करने के लिए एक इंस्पिरेशन देते हैं। मेरे आसपास सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जब हम इस थॉट को लेकर के आते हैं, आप पूरे दिन में, आपको पता है चैलेंजेस आने हैं, तो आपको थॉट सुबह क्या देना है? आज जो भी चैलेंज आएंगे, मुझ में भगवान ने इतनी शक्ति भरी है, हम सब कुछ फेस कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ थॉट हम सब अपनी लाइफ में, किसी के सामने एग्जाम है और उसको एग्जाम पास आउट करना है, बच्चा है, कोई एग्जाम देने जा रहा है, तो उसको माइंड में सुबह उठ के कि मैं जो भी आज एग्जाम आएगा, मेरे को वो सारा आता है, बहुत इजी आएगा, आप मन को थॉट दें। तो ऐसे कुछ थॉट हम दें, तो आप देखें अपनी लाइफ को आप कितना स्मूथ बना लेते हैं।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको ये टिप देने के लिए, उन्हें हमेशा मोटिवेट रखने के लिए। और आज ये टॉपिक जो हीलिंग था, मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोगों को एक पॉजिटिव चेंज उनकी लाइफ में मिलेगा। बट कल हम एक और नए टॉपिक के साथ सुबह 6 बजे यहीं पर 89.6 रेडियो महारानी पर आपका भी वेट करेंगे कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, मंडे वाली सुबह को हमने कर लिया है खुशी खुशी पास, और अब लेकर आ गई हूँ ट्यूसडे वाली सुबह, यानी कि एक दिन तो चलो इस वीक का निकल गया है और अब कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर से वीकेंड आ जाएगा। देखिए भाई, वीकेंड की तो ऐसी एक्साइटमेंट है ना कि जाता नहीं है, उससे पहले हम उसे याद कर लेते हैं। देखिए आ जाएगा, लेकिन आज ट्यूसडे को रिकवर करना है, हमको मौका मिला है बहुत सारी चीजें करने का, वीकेंड अभी दूर है, लेकिन ट्यूसडे की मॉर्निंग को चलिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, और कुछ खास है आज मेरे पास, वो भी आपको बताऊंगी। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, तो बने रहिए रेडियो महारानी पर। लेकिन उससे पहले फटाफट से गर्मा गर्म चाय की गर्मा गर्म सिप ले लो यार, क्योंकि चाय के साथ ना जो डोपामिन मिलता है ना वो कहीं और नहीं मिलता, और यही डोपामिन मिलने वाला आपको रेडियो महारानी के शानदार से ट्रैक सुनने के बाद। तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

हेलो हेलो जी, तो देखिए भाई, मैं अक्सर ना आपको साइबर की कहानियां बताती हूँ कि मार्केट में ना किस तरह के स्कैम आ गए। आपको क्या लगता था कि स्कैम सिर्फ यही होता है आपके बैंक बैलेंस खाली हो जाना, वो भी इलीगल तरीके से? तो भाई देखिए, स्कैम की ना एक और कहानी मैं लेकर आ गई हूँ और इसका पार्टनर हम धीरे धीरे बनते ही जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं चाइना। चाइना से एक शॉकिंग ब्यूटी स्टोरी सामने आई है जिसकी वजह से 75 साल की एक महिला ने 2016 से लेकर अब तक ब्यूटी ट्रीटमेंट पर लगभग 4.3 करोड़ खर्च कर दिए, यानी कि उनकी पूरी रिटायरमेंट सेविंग्स जो थी ना वो खत्म हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ पर जो इन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, एक बार आपको वो भी बता देते हैं, जैसे कि स्किन लाइटनिंग, थेड लिफ्टिंग, मसाज, आईब्रो, लिप टैटू और न जाने क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाए। आज मुझे पहली बार पता चल रहा है कि क्या क्या ब्यूटी सर्विसेज मिलती हैं जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। मुझे लगता था कि थ्रेडिंग और अपर लिप से ना काम बन जाता है, लेकिन भाई साहब इतना कुछ कराना होता है। आई नो, अब आप ही सोच रहे हैं कि यार अंजलि ये स्कैम कैसे हुआ। भाई देखिए, स्कैम की कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। जब ये मोहतरमा ये सारे ट्रीटमेंट्स करा रही थी ना, इन्हें मार्केट रेट पता ही नहीं था, और जब ये ट्रीटमेंट कराने गई तो भाई इनको चार्ज किया गया 10 से 20 गुना ज्यादा, और हद तो तब हो गए जब एक लिप टैटू के लिए इन्हें पैकेज दिया गया 5.7 लाख का। और जब ये सारे बिल्स इनकी बेटी के सामने आए ना, तब इनकी बेटी को पता चला कि मेरी मम्मा तो ये स्कैम का शिकार हो चुकी है, अपनी ब्यूटी की वजह से अपनी सारी सेविंग्स जो है इस पर उड़ा चुकी है। देखिए, अगर अब तक आपको लगता था ना स्कैम का मतलब यही है कि कोई स्कैमर आकर आपके बैंक से पैसे लूट कर ले जा रहा है, तो ना ना ना ना, मार्केट में ना बहुत तरह के स्कैम आ गए हैं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि मार्केट में इन तरह के स्कैम से भी अब आपको बचकर रहना है। और लव योर सेल्फ यार, अपने आप को प्यार करो, अडोर करो अपने आप को, और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक जो है खास आपके लिए।

Hi, I am Dr. Nitish Diwan. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना ज़रूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें.

आजकल हर किसी को सोशल मीडिया पर जाना है, फिर चाहे बात की जाए मम्मी बाबा की या बात की जाए मम्मी बाबा के बच्चों की। अगर बच्चे सोशल मीडिया पर नहीं है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के हर एक मोमेंट को ना सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, क्योंकि वो उनके लिए एक प्राउड का मोमेंट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है आपका ये प्राउड का मोमेंट किसी स्ट्रेंजर के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन बन सकता है? तो देखिए भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है ना, वो हमसे ही आता है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं। और आजकल ना पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल फंक्शन, बर्थडे, इवन वेकेशन तक के जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने फोटो शेयर की, प्रॉब्लम ये है कि जो आपने स्कूल की फोटो शेयर की है, वहाँ पर सारी स्कूल की डिटेल्स है। आपने जिस वेकेशन की फोटो शेयर की है, वहाँ पर आपकी लोकेशन है। और जिस रूटीन की फोटोज आप शेयर करते हैं, किसी स्ट्रेंजर को ये पता है कि आपका बच्चा दिन में क्या करता है। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर मन करे ना कोई भी मोमेंट शेयर करने, तो एक बार रुककर जरूर सोचेगा कि ये मोमेंट्स आपके लिए है या बाहर वालों के लिए है। और बस यही कहना चाहती हूँ, इन क्यूट मोमेंट्स को ना अपने जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रखिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए, बिकॉज प्राइवेसी एंड सेफ्टी दोनों मैटर करती है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में।

सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

हेलो हेलो जी। तो देखिए, वैसे में जब मैं आती हूँ ना तो बहुत सारे साइबर स्कैम लेकर आती हूँ, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ डिजिटल अरेस्ट में आए एक नए ट्विस्ट की। तो देखिए, यहाँ पर जो स्कैमर्स है ना, वो अब सिर्फ पुलिस या फिर CBI बनकर कॉल करने के साथ साथ आपको फेक लीगल नोटिस और वीडियो कॉल का इस्तेमाल करके भी फंसा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर कहते हैं कि आपका नंबर किसी क्राइम में यूज हुआ है, और यानी कि सिंपल सा फंडा ये है, ये आपको इस तरह का यकीन दिलाते हैं कि आपके नाम से कोई इलीगल ट्रांजैक्शन मिली है, जिसकी वजह से जो है आपको अरेस्ट करके रखना पड़ेगा और आपके अकाउंट को फ्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं रीसेंट केस की बात करूँ ना, तो एक रीसेंट केस आया है जहाँ पर विक्टिम को ना लीगल एक्शन और बेल के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रेशर किया गया। फिर क्या था, फिर वो इस स्कैम का शिकार हो गया। तो मैं आज आपको यही बताने आई हूँ कि इंडिया में ना एक चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, और वो ये है कि इंडिया में डिजिटल अरेस्ट नाम के जैसी कोई भी लीगल प्रोसेस होता ही नहीं है। तो अगर कोई भी आपको ऑफिसर बनकर बोलता है कि कैमरा ऑन करो, फोन मत काटो और पैसे ट्रांसफर कर दो, तो भाई फोन बिल्कुल काट दीजिएगा, कैमरा भी ऑन मत कीजिएगा, और हाँ, तुरंत जाकर करा दीजिएगा कंप्लेंट। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताने आई थी, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो हेलो जी। तो चलिए भाई, वक्त हो गया है सोशल स्यापा को। आज का सोशल स्यापा ना वाकई स्यापा लेकर आ गया। अच्छा, आपको क्या लगता था ये जो आंटियां मोहल्ले में चुगली करती है, ये टैलेंटेड नहीं होती, ये सिर्फ में टाइम पास करती है? यही गलत फहमी ना आज मैं दूर करने आई हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोलंबिया में एक आंटी ने इसी को बिजनेस बना दिया है। तो देखा, अब हुआ ना अफसोस, जिन आंटियों को ना हम इतना कोसा कर देते कि आंटी आपके पास कोई काम नहीं है, देखे भाई उन्होंने अपने इसी काम को ना एक्चुअल में काम बना लिया और अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया। तो देखिए, 67 इयर्स ओल्ड मिरियम नाम के इस विमेन ने ना अपने नेबरहुड के सारे सीक्रेट्स गॉसिप कलेक्ट करके ना लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। और उनका कहना है कि इसी काम से उन्होंने अब तक 2 घर खरीद लिए हैं। और वो पता है खुद को ना बहुत ही प्राउड के साथ बताती है कि मैं प्रोफेशनल चुगलीखोर हूं, यानी कि मैं ना गॉसिप कर सकती हूं और मुझ जैसे गॉसिप ना शायद ही मोहल्ले में कोई दे सकता है। अब आप जरूर सोचेगा कि हमारे यहाँ जिन आंटियों को हम बोलते हैं ना कि आंटी यार अपना काम करो, क्यों किसी की जिंदगी में ताक झांक कर रहे हो। अब आप उन्हें जाके बताइए कि आंटी आपके इस टैलेंट से ना आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और यार अगर आपको कोई मौका मिले ना तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी चुगली करके ना अच्छा खासा पैसा कमाइए। क्यों 9 to 5 करना है आपको, इतनी जद्दोजहद करनी है लाइफ में, इस तरह की चुगली कीजिए, गॉसिप कीजिए, पैसा कमाइए और हाँ अपनी लाइफ को ना और अपनी लाइफ में मजे कीजिए। लेकिन ये तो था देखिए भाई मजाक के लिए, लेकिन अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कहानी हमें क्या लेसन देती है। तो भाई देखिए, आज की स्टोरी हमें ये लेसन देती है, गॉसिप से पैसा मिले ना मिले, लेकिन अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है ना किसी के साथ शेयर मत कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी ये जो कहानी है ना वो कब जाकर कहां पर ब्रॉडकास्ट हो रही हो। और इसी के साथ ही आज का सोशल स्यापा, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें मैंने आपके लिए लेकर आती रहूंगी, लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है। वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular, pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है। डॉक्टर कॉलिंग।

हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। इस कंडीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्ट्रेस फील होता है, जैसे किसी अपने को खोने का दुख, सडन शॉक या इंटेंस फिजिकल स्ट्रेस, और जिसके बाद ना हार्ट की मसल टेम्परेरली वीक हो सकती है और सिंड्रोम हार्ट अटैक जैसे फील होने लगता है। लेकिन बताए यहाँ पे गुड न्यूज क्या है, दिल टूटने के बाद भी ना प्रॉपर मेडिकल केयर के बाद आप रिकवर कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कभी आपने सोचा है किसी इंसान का हमारी जिंदगी से जाना हमारी खुद की जिंदगी पर कितना गहरा असर डालता है? इसलिए भाई आज का मैं एक टेक अवे लेकर आई हूँ और आज ना आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप ये चीज आज यहाँ से लेकर जाए। स्ट्रेस को सिर्फ माइंड की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको कुछ भी होता है ना दिल टूटने के बाद, जैसे कि आपके दिल में दर्द, ब्रेथलेसनेस या फिर जितना भी अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट है ना, तो मेडिकल हेल्प जरूर लीजिए। और हाँ यार, दिल को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए उन्हें खुशी खुशी विदा कर दीजिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। अब वक्त है खुद से प्यार करने का, तो खुद से प्यार कीजिए, खुद को प्रायोरिटी बनाइए और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

आज ना एक चीज सोच कर देखेगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए रील से ब्रेक लिया जाए तो क्या होगा। मैं बताती हूँ ना क्या होगा। ना तो सुबह उठते ही स्क्रोलिंग होगी, ना ही एक आखिरी रील वाला झूठ होगा। तो भाई देखिए, यहाँ पर ना एक मैं स्टडी लेकर आई हूँ। तो स्टडी में ना एक्सपर्ट्स ने बताया कि सोशल मीडिया से कुछ दिनों का ब्रेक लेने पर ना आपको मिल सकता है ज्यादा टाइम, बेहतर मेंटल क्लैरिटी, मूड में सुधार और सेल्फ स्टीम में बूस्ट। तो देखिए भाई, बात तो फायदे की है यार, क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं ना, एक तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, डेटा तो छोड़ दो यार, डेटा तो अनलिमिटेड है, लेकिन आपको पता है हमारा फोन भी इफेक्ट होता है, हमारी फोन की बैटरी भी खराब होती है। ये तो चलो दो ऐसी ऐसी बातें थी कि ठीक है, जिनका हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारा अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया? हम अपनी स्क्रीन को सिर्फ स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हम किसी रील को पूरा खत्म होने तक का भी इंतजार नहीं करते। अब आप सोचिए कि हमारा फोकस्ड करने का जो तरीका है वो कितना खराब हो गया, हमारा डिसीजन मेकिंग कितना खराब हो गया, और हमने अपने माइंड पर कंट्रोल भी खो दिया। हम जो वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं हमें लगता है वही सच्चाई, जिसकी वजह से हमें इतना स्ट्रेस भी ले लेता है कि यार सब घूम रहा है, सबकी अच्छी जॉब हो रही है, सब अच्छा पैकेज ले रहा है, और हम क्या कर रहे हैं। ये चीजें ना कंपैरिजन को भी लेकर आती है। तो यहाँ पर अब टाइम हो गया डिजिटल डिटॉक्स करने का खुद को। और स्टडी में ना ये भी बताया गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने वालों ने ना स्ट्रेस घटने, ओवरऑल वेलबींग बेहतर होने जैसे फायदे भी देखे हैं। तो शायद 7 दिन रील से दूरी, बोरियत नहीं ब्रेन की छुट्टी हो सकती है, और साथ ही आपको मिल सकता है एक बढ़िया रीस्टार्ट, एक किकस्टार्ट, जिससे ना आप नई चीजें अपने दिमाग में लेकर आ सको। इस बार आपने करना क्या है, इस बार ना आपने एक हफ्ते का चैलेंज लेना है खुद से, कोई रील नहीं देखनी है, कोई रील बनानी भी नहीं है, पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स करना है खुद को, और फिर देखिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट होती है। और फटाफट से यार मैं तो चलती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा काम भी है मेरे पास। आपका क्या है, अभी भी बैठकर रील देख रहे हो ना, देखते रहो। और इसी के साथ मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी वक्त हो गया है इस म्यूजिक ब्रेक का।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो हेलो जी हैं जी, क्या हाल चाल है फरीदाबाद? देखिए यार, हाल चाल बहुत बेहतर है, आई नो। और बेहतरीन करने के लिए ही तो मैं आई हूँ, और ना आज मैं एक वायरल स्टोरी लेकर आ गई हूँ। अगर मैं बात करूँ ना आई लव यू की, तो आजकल के टाइम पर ना आई लव यू कहना बहुत इजी हो गया है। करना ही है, एक मैसेज टाइप करना है, एक इमोजी भेजना और बस प्यार का इजहार हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना उस दौर की, उस जमाने की, तो एक बार इमेजिन कीजिएगा, 1964 में किसी ने अपनी वाइफ के लिए 8 फीट लंबा हैंड रिटन लव लेटर लिखा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ना ये पुराना लव लेटर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस लव लेटर की फोटो आई, फिर वीडियो आई, और जब वीडियो सामने आई ना लोग पागल हो पाए। और पता है खास बात क्या है? खास बात सिर्फ ये नहीं कि ये लेटर 8 फीट लंबा है, बल्कि खास बात ये है कि सोच के जरा देखिएगा कि इसे लिखने में कितना टाइम लगा होगा, कितना पेशेंस, कितने इमोशंस लगे होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द वायरल पोस्ट, ये कपल 62 साल से शादीशुदा है, यानी कि इन्होंने ना एक दूसरे को अपने 62 साल दिए। अब सोचिए कितनी बार इन्होंने एक दूसरे को माफ किया होगा, कितनी बार इन्होंने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया होगा, और इसी तरह करते करते ना आज ये शादी यहाँ तक पहुँची है। और अगर आज प्यार की बात करें ना, तो प्यार सिर्फ डीएम तक रह गया, व्हाट्सएप मैसेजेस तक रह गया। और अगर ज्यादा प्यार किसी को एक्सप्रेस करना हो तो ज्यादा से ज्यादा कुछ गिफ्ट्स ऑर्डर कर देते हैं बस। लेकिन अगर देखी जाए ना, प्यार की असली वैल्यू ना उन शब्दों में नहीं है जो आप लिखते हो, बल्कि उस पेशेंस में जो आप किसी के लिए निकालते हो, उस टाइम में है जो आप किसी के लिए निकालते हो, उस एफर्ट्स में है जो आपने किसी के लिए किया होता है। तो आज मैं कहानी इसलिए लेकर आई थी, अपने प्यार को ना थोड़ा सा और एफर्ट्स दे करना स्पेशल बना दो। और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

यार आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा, गर्मियाँ इतनी ज्यादा हो गई है, अभी मेरे पंखे को कुछ हो गया यार। अभी नया लगवाया था और फिर मैं अगर पापा को बोलूंगी ना पापा यार मेरा पंखा चेंज करवा दो, उन्होंने यही कहना है कि बेटा तेरे रूम का पंखा ही इतना धीरे क्यों चलने लगता है। तो भाई देखिए अगर ये प्रॉब्लम आपको भी आ रही है ना तो आज मैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ आई हूं। अब आप बोलेंगे यार अंजलि इतना इंपॉर्टेंट था इस पर बात करना, तो भाई बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट था इस पर बात करना। अगर आपके घर का ही पंखा अचानक से स्लो हो गया ना तो नया लेने की बजाय ना ये जरूर सुनकर जाएगा। गर्मियों में ना अक्सर ऐसा होता है कि फैन की स्पीड कम हो जाती है, तो करना क्या है अपने, सबसे पहले ना नया पंखा लेने से बचना है, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो फैन में ना हो करना किसी छोटी सी चीज में हो। ये मैंने आज सोचा और तभी मैंने इस पर रिसर्च किया और आपके सामने लेकर आ गई हूँ आज पंखे को ठीक करने का जुगाड़। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्लेड या फिर जो मोटर है ना उसके डस्ट को क्लीन कराना है, एंड फिर देखिएगा जो बाद में कैपेसिटर है ना रेगुलेटर और जितनी भी वायरिंग है ना उन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है ना कि आपके फैन की मोटर बार बार गर्म हो रही है जल्दी और हवा नहीं आ रही, फिर आपको खुद से नहीं करना कुछ भी, फिर ना आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है। यानी कहने का मतलब ये था कि पहले खुद से कोशिश करो, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अपने इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, नया पंखा मत खरीदना। बिकॉज होता है क्या ना गर्मियों में यूजुअली यही प्रॉब्लम आती है पंखों में और जिसकी वजह से ना हम फटाफट से दुकान पर चले जाते हैं खर्चा करने के लिए। तो देखिए ये ना आज का बिजनेस मंत्र भी है, अगर आपको भी लगता है ना कि ऐसे थोड़ा बहुत पंखा साफ करके आप पैसा कमा सकते हो तो यार आप कर सकते हो, ये चीज ट्राई जरूर कीजिएगा और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए। ट्राई मिलता है थोड़ी देर में।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें, अपना जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

कौन बनेगा करोड़पति तो पता नहीं, लेकिन कौन कर रहा है स्कैम ये जरूर पता लगाना है। अब मार्केट में ना एक और स्कैम आ गया और ये स्कैम आया कौन बनेगा करोड़पति के जैसा। अब एक बार सोच के जरूर देखेगा कि आपको फेसबुक पर ना एक गेम दिखाई दे किस चेहरे को पहचाने, और अगर आपने ये चेहरा पहचाना ना तो आपको 8.5 लाख रुपीज का प्राइस मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो कोई आपको एक चेहरा पहचानने का इतना बड़ा अमाउंट क्यों देगा, और अगर दे भी देता है तो आप इतने लकी कैसे हो सकते हो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक 54 ईयर ओल्ड मैन ना इसी तरह से फेक केबीसी गेम की ट्रैप में फंस गया। और हुआ क्या, सबसे पहले स्कैमर ने प्राइस रिलीज करने के नाम पर ना इनसे लगभग 2000 रुपए ले लिए, और फिर इसी तरह से अलग अलग टैक्स इनसे मांगा गया, और इन्हें पता भी नहीं चला, इन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ, इनके बैंक से 1.5 करोड़ ट्रांसफर कर लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी आपको फ्री में कुछ भी नहीं देता है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखें। किसी भी लॉटरी किसी भी प्राइस के लालच में मत आइए, किसी के साथ भी अपना KYC OTP एंड पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, खासकर किसी लालच के चलते। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी जेन्युइन प्राइस लेने के लिए ना बार बार टैक्स नहीं मांगेगा आपसे। और साथ ही एक और चीज का आपको ख्याल रखना है, सेलिब्रिटी या फिर RBI के नाम पर जितने भी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं ना उन पर भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि फ्रॉड से बचे, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपको करना क्या है, 1930 पर कॉल करना है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। इसके साथ ही आप cybercrime.gov.in पर भी जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलते हैं थोड़ी देर में।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

0: दिल्ली है दीवानों की दिल्ली।
1: देखिए भाई, दिल्ली दीवानों वाली तो है, लेकिन दिल्ली ना थोड़े से नई ट्रेंड वाली भी है। अब यार, कभी सोचा था कि किसी की बाइक चोरी हो जाएगी और चोरी होने के बाद ना आपको व्हाट्सएप पर एक QR कोड भेज दिया जाएगा? तो भाई देखिए, दिल्ली के नारायणा एरिया से ना KTM स्पोर्ट्स बाइक चोरी हो गई और ऑनर हर्षित जो है उन्होंने पुलिस में कम्प्लेन भी कर दी, लेकिन FIR के बाद ना उनके व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, बाइक मेरे पास है, 10,000 दो, वापस ले लो अपनी बाइक। तो भाई यहाँ पर ना पैसे मांगने का ही तरीका बहुत ही बढ़िया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सामने वाले ने QR कोड भी भेज दिया, कहा कि पहले 5,000 एडवांस भेजो, फिर बाइक की लोकेशन और वीडियो शेयर करूंगा, एंड उसके बाद ना 5,000 और देकर अपनी बाइक ले जाना। लेकिन हर्षित ने ना यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट मूव खेला, ऑनलाइन पेमेंट करने के बजाय ना कैश में डील करने को कहा और कहा कि ठीक है मैं तुम्हें कैश दे दूंगा, लेकिन तुम्हें ना मेरे सामने आना होगा कैश लेने के लिए, अगर तुम रेडी हो तो भाई बता दो, मैं अभी पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। और फिर अब हर्षित ने क्या किया, हर्षित ने ना पुलिस साइबर सेल की हेल्प से मोबाइल नंबर और QR कोड से जुड़े जितने भी बैंक अकाउंट थे ना उनकी जांच की, पुलिस ने वेरीफाई किया मैसेज भेजने वाले एक्चुअल बाइक थेफ्ट में इन्वॉल्व्ड है या फिर किसी ने थेफ्ट की इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाकर अलग से फ्रॉड करने की कोशिश किया, ये सारी चीजों का पता लगाया पुलिस ने और उसके बाद ना एंड में उसे पकड़ लिया गया। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक अलग तरीके से अवेयर करने आई हूँ, हो सकता है कि आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो जाए, लेकिन उस फ्रॉड में फंसने के बजाय ना आप ट्राई करना कि हेल्प ले लो। और वो हेल्प आपको किसकी लेनी है, अपने पड़ोसियों की नहीं लेनी, यार पड़ोसी ना अक्सर फंसा देते हैं, आपको हेल्प लेनी है पुलिस की, पुलिस के पास जाना है, सारी डिटेल्स देनी है, एंड फिर देखिएगा जो भी आपके साथ स्कैम हुआ ना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सो याद रखिए, अगर चोरी के बाद कोई भी आपको QR कोड भेजता है ना तो कभी भी पेमेंट मत कीजिएगा, बी अवेयर बी अपडेटेड, और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है थोड़ी ही देर में।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

यार मुझे नहीं पता कि कौन वो लोग है जिन्हें टमाटर बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यार जब मेरे किसी जंक फूड के टॉपिंग में टमाटर आ जाता है ना, तो मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। और मेरे ऑफिस में ना रोहित सर है, जिन्हें टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी टमाटर वाला कुछ नहीं खा सकते। अगर टमाटर उनको सब्जी में भी दिख जाते हैं ना, तो यार वो दूर रहते हैं। उन्हें इस कदर नफरत है इस लाल रसीले टमाटर से। लेकिन आपको पता है ये हमारे ब्रेन के लिए कितना बढ़िया होता है। ये सिर्फ सैलेड में काम नहीं आता, खाने में काम नहीं आता, ये हमारे ब्रेन को सपोर्ट करने में भी काम आता है। और आपने कभी सोचा है कि रोज टमाटो या टमाटो पेस्ट खाने से ब्रेन पर कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है? तो मैं बता देती हूँ आज कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एक रीसेंट रिसर्च आई है, क्लिनिकल ट्रायल में हेल्दी एडल्ट्स पर रिसर्च की गई है, जिन्होंने टोमेटो पेस्ट की कंजप्शन पर स्टडी की, एंड फाइंडिंग्स में पाया कि कंसंट्रेशन एंड एसोसिएटिव मेमोरी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखी गई है सिर्फ टमाटर खाने से। और रिसर्चर्स ने ब्रेन के फंक्शनल कनेक्टिविटी पैटर्न में भी चेंजेस देखे हैं। तो भाई देखिए, टमाटर खाने से फायदा तो बहुत बढ़िया है। तो अगर टमाटोज की बात करूँ तो इसके अंदर आपको लाइकोपिन मिलता है, जो कि अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको बताया यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये स्टडी ये प्रूव नहीं करती कि टमाटो कोई मेमोरी मेडिसिन है। तो अगर आप सोच रहे हैं ना कि टमाटो खाने से आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो जाएगी, तो अभी तक ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। रिसर्च अभी लिमिटेड है, इसलिए बैलेंस डाइट का पार्ट बनाना टमाटो को बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप टमाटो नहीं खाते हो ना मेरी तरह, जो बर्गर में टमाटो देख कर ही भाग जाता है, तो आपसे मत भागना यार, खा लेना, क्योंकि अभी मैं भी ट्राई करने वाली हूँ। और जो मेरे साथ रोहित सर है ना, उन्हें भी जरूर ट्राई करने वाली हूँ कि यार खाओ टमाटर, टमाटर में अच्छी चीज है। सो अब तक सिर्फ पालक खाया जाता था ना, अब टमाटर भी खाया जाएगा। और इसी के साथ ना एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

0: ही प्रेरणा।
1: अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये जो डस्टबिन में आप कूड़ा डाल रहे हैं ना, ये जो डस्टबिन में आप चीजें डाल रहे हैं, आपको पता है इन चीजों से ना कल जाकर बिल्डिंग मटेरियल भी बन सकता है। यकीन नहीं होता ना मेरी बातों पर, इसीलिए मैं पूरे प्रूफ के साथ आती हूँ। तो भाई देखिए, जापान से टेक्नोलॉजी की एक ऐसी न्यूज सामने आई है ना, जिसे सुनने के बाद ना आप कहेंगे कचरे का भी इतना बड़ा काम हो सकता है, ये तो सिर्फ जापान ही कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के रिसर्चर्स ने ये बताया है कि डिस्कार्डेड फूड्स और वेजिटेबल्स को यूज करके एक प्लांट बेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेवलप किया गया है और प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले जितना भी फूड वेस्ट है कलेक्ट किया जाएगा, फूड वेस्ट को ड्राई करके पाउडर बनाया जाएगा, फिर पानी ऐड करके और उसमें थोड़ी हीट प्रेशर के साथ मोल्ड किया जाएगा, जैसे कि कुछ देर में आपको ईंटें मिल जाएंगे। और ये ईंटें बनी होंगी किससे भाई, आपके फूड वेस्ट से। यानी कभी आपने सोचा है जिस खाने को हम वेस्ट समझ रहे थे, कितने काम की चीज है यार। और अगर ऐसी ही चीजें रिसाइकल होती रही ना, तो एक दिन कुछ वेस्ट ही नहीं बचेगा, सब कुछ यूज्ड में आ जाएगा। इसी को फिर रीयूज रिसाइकल हम लोग कहेंगे। और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत ही सस्टेनेबल है, हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, एनवायरनमेंट को उसकी चीजें भी मिलेंगी और फ्यूचर ना यार, फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाएगा। देखिए जापान बहुत ज्यादा आगे निकल गया, एक दिन हम लोग भी कुछ ऐसा इनोवेशन करेंगे जरूर। और हम लोग भी बहुत सारे इनोवेशन करते हैं, लेकिन ये इनोवेशन ना कुछ हटके है। तो ऐसे इनोवेशन सुनने के लिए ना बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं थोड़ी देर में।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular, pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड। डॉक्टर कॉलिंग।

आपने हमेशा फीवर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कभी आपने ट्रैक फीवर के बारे में सुना है? ये कैसे सुनोगे जब घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, कभी ट्रैक ही नहीं करोगे, कभी ट्रिप ही नहीं करोगे। तो देखिए भाई, ट्रैक फीवर लेकर आ गई हूँ। और ट्रैक फीवर ना खास कर क्या, ट्रैक फीवर सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो ट्रैकिंग से वापस आते हैं, और ट्रैकिंग से वापस आने के बाद ना उन्हें हल्का सा फीवर, बॉडी एक और साथ ही हेडेक या फिर गले में दर्द जैसी चीजें होने लगती है। तो ये पूरी तरह से कॉमन है और कॉमनली कहा जाता है इसे ट्रैक फीवर। और जो रिसेंट स्टडी आई है, रिसेंट स्टडी में ये बताया गया है कि ट्रैकिंग के बाद बॉडी पर फिजिकल स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन,

लैक ऑफ स्लीप एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से ना टेम्पररी वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स अपीयर होते हैं और ये पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर आपको ट्रैक से पहले कोई फीवर आ रहा है ना तो वो फीवर नॉर्मल नहीं है, उस फीवर के साथ आप कभी भी ट्रैक करने मत जाइएगा। हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर हो सकता है कोई एल्टीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सो इन चीजों का ख्याल रखिए जब ट्रैक के लिए जा रहे हैं। हेल्दी होकर जाइए ताकि आप ज्यादा फन कर सके, ताकि आप ज्यादा मेमोरीज कलेक्ट कर सके, और जैसे ही ट्रैक खत्म करके अगर वापस घर आ रहे हैं और फीवर हो भी जाता है तो प्रॉपर रेस्ट लीजिएगा, हाइड्रेशन का ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशियस फूड लीजिएगा और साथ ही लीजिएगा प्रॉपर स्लीप, दैट्स इट। देखिए ये सारी चीजें हैं जो आपके फीवर को खत्म कर देंगे, और अगर तब भी फीवर खत्म नहीं होता ना तो आपको पता है ना कहाँ जाना है, तो जाइएगा अपने डॉक्टर के पास। ये कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल रखिएगा, और आज के फिटनेस वाले फंडे में बस यही लेकर आई थी। फिर से मिलूंगी लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

हाँ जी देखिए भाई, बातें बहुत सारी हो गई हैं और बातें करते करते ना अभी मेरी नजर इस घड़ी पर पड़ी तो पता चला कि 11 बजने वाले हैं। सुबह 7 बजे आई थी और 11 बजने वाला है, यानी कि आज मैंने बहुत सारे गप्पे शप्पे आपके साथ लड़ाए हैं, बहुत सारी अपडेट्स आपको दी हैं, इंफोटेनमेंट का डबल डोज मैं लेकर आई थी। तो भाई अभी ये घड़ी इशारा कर रही है कि अंजलि बस बहुत हुआ बेटा, अब चलिए यहाँ से, बिकॉज आज जाएंगे तभी तो कल आऊंगी ना। सो मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। और जाते जाते ना एक बार ये जरूर बता देती हूँ कि आज आखिर मेरे टिफिन में क्या है। सो भाई आज भी मैं बिना टिफिन के आई हूँ और आज मैं करने वाली हूँ चीट मील। सो कभी कभी ना खुद को एक रिवॉर्ड दे देना चाहिए। इस पूरा वीक ना मैंने ट्राई किया था कि कोई जंक नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस कहाँ रख पाती हूँ ना, तो इस बार भी नहीं रख पाई थी। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो यही होगा मेरे साथ। तो अभी फिलहाल मैं चलती हूँ, अपना टिफिन एंजॉय करूंगी यहाँ से जाने के बाद, एक गर्मा गर्म कॉफी पीने वाली हूँ और फिर कल आऊंगी एक नई एनर्जी के साथ, एक नई वाइब के साथ। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखेगा, अपनों का ख्याल रखेगा और सुनते रहिए रेडियो महारानी पर। ये शानदार सा ट्रैक जो है खास आपके लिए, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

एवरी ड्रीम एवरी मीन्स एवरी ड्रीम इज वैलिड। 89.6 रेडियो मारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और ये कोड की पहली लाइन पढ़ते हुए मेरे को इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली लाइन ही है एवरी ड्रीम इज वैलिड, एवरी वॉइस मैटर, एवरी स्टेप फॉरवर्ड क्रिएट अ पाथ फॉर अदर फॉलोअर्स। मतलब आप पीछे की पूरी कहानी समझ रहे, पीछे का पूरा मतलब समझ रहे हैं कि वो हर ड्रीम जो एक वुमन ने देखा है वो वैलिड है, उसे पूरा करना चाहिए। हर उठाई हुई आवाज किसी भी अन्याय के खिलाफ मैटर करती है, मायने रखती है, और वो उठाया हुआ पहला कदम जिसको फॉलो करके बहुत सारे लोग उस पाथ पे चलने वाले हैं जहां चलने से पहले 10 बार वो आज से पहले सोच रहे थे। हर एक वो चीज मैटर करती है, और वो पहला कदम उठाने वाली लेडीज ही इतिहास रच देती हैं। अक्सर हमने सुना है कल्पना चावला और मैरी कॉम, बहुत सारी ऐसी लेडीज की हम मिसाल देते हैं कि उन्होंने वो पहला कदम उठाया तो शायद आज वुमेन इस फील्ड में यहां तक पहुंच पाई हैं। क्रिकेट में भी अगर किसी वुमेन ने पहला कदम वो ना उठाया होता तो शायद आज वुमेन्स क्रिकेट टीम इतना अच्छा नहीं कर रही होती। तो वो पहला कदम इज इम्पॉर्टेंट, उसके बाद फॉलोअर्स तो अपने आप बन ही जाते हैं। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

प्रिया नागर। और ये बिहाइंड द सीन से अब फ्रंट स्क्रीन इसलिए आ रही है जब ये पॉडकास्ट दे रही है, जब ये इंटरव्यूज दे रही है, तो ये उस टाइम के मिरेकल्स बता रही है। तो ये बता रही है कि जब ये फॉरेन में रहते थे और वहां बाबा को लोग कितना बिलीव कर रहे हैं और इंडियन शायद उतना नहीं कर रहे थे एक टाइम पे, बट इस मूवी ने उनके माइंडसेट, उनकी बहुत सारी चीजें चेंज कर दी और मिरेकल हैपेंस। ये मूवी टोटली वो लोग कह रहे हैं मिरेकल है, क्योंकि शुरू में ये 300 स्क्रीन पे आई, 300 स्क्रीन पे ना सक्सेस होने की वजह से 23 स्क्रीन बची थी और उस 23 स्क्रीन से लगभग 5000 स्क्रीन तक वापस आना, स्क्रीन बढ़ना, ये यूजुअली किसी मूवी के साथ नहीं होता, बट इस मूवी के साथ हुआ है। अब ये चमत्कार समझिए या मूवी की शक्ति समझिए या फैंस का प्यार समझिए, आप जो समझना चाहते हैं समझिए, पर मूवी ने अपना सक्सेस रेट दिखा दिया है और इतना दिखा दिया है कि अब सीजन 2 इनको बहुत जल्दी बनाना पड़ेगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले, जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है। और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है, जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

जो नारी है ना वही असली शक्ति का रूप भी है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक शक्ति का सही एग्जांपल अब मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। मधुरा कर इंडिया की एक न्यू पावर लिफ्टिंग स्टार बनती जा रही है। 17 साल की उम्र में 4 गोल्ड मेडल जीतना IPF वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इंडियन पावर लिफ्टिंग जो पूरी चैंपियनशिप है वहां पर ये जीत के आई है। जूनियर कैटेगरी में 52 kg इनका वेट है और इन्होंने जो लिफ्ट किया है वो लिफ्ट किया है 292.5 kg, मतलब अपने वेट से लगभग 3 गुना और ज्यादा इन्होंने वेट जो है वो लिफ्ट करके ये मेडल्स जो हैं वो अपने नाम करे हैं। स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ऑल ओवर सब कुछ वहां पर इन्होंने करके दिखाया, और जिस हिसाब से इन्होंने डोमिनेट किया उस स्टेडियम को तो ये 100% वर्ल्ड चेंजिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। इसीलिए शी चेंज द वर्ल्ड में आज हमने इनको लिया है। स्मॉल बॉडी, मैसिव स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटिशन सबके लिए बहुत स्ट्रांग, चैंपियन का माइंडसेट लेके इन्होंने वहां पर वो पूरी तरह से स्टेडियम में इंडिया इंडिया के जो नारे होते हैं, जो इंडिया इंडिया का जो जोश होता है, जो जज्बा होता है, उसको जगा दिया था। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

क्या है भैया ये 80s का ट्रेंड ऐसा क्या आया कि ये पार्टीज जो हमारे इंडिया की हैं वो आपस में लड़ने लगे। भाई आपको हमने बनाया था लीड करने के लिए, आप ऐसा कैसा लीड कर रहे हो, आपस में ही लड़े जा रहे हो कि ये देखो 80s के टाइम पे ये पार्टी ऐसा करती थी, 80s के टाइम पे ये पार्टी ऐसा करती थी, आपस में मीम बना बना के लड़ रहे। भाई आप बनाओगे तो जो बाकी जनता है वो तो बनाएगी बनाएगी ना, उनको तो हम रोक ही नहीं सकते, उनका तो पूरा हक है जब जो उनके लीडर्स हैं वही ऐसी चीजें बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। और भाई पिछले 3 दिन से 4 दिन से मेरा पूरा सोशल मीडिया इसी चीज से भरा हुआ है, सिर्फ एक चीज, 80s की फोटोज। अब मुझे लगता है 80s में इतने लोग रियलिटी में नहीं थे जितने अब पहुंच चुके हैं, उनमें मैं भी हूँ। हालांकि मैंने भी कौन सी कम बनाई है, मैंने भी बनाई दी थी 15, 20, 16 पता नहीं कितनी बनाई थी, पर 15 से तो ऊपर का ही आंकड़ा होगा जो मैंने भी क्रिएट करी है। तो अब जब सब कुछ फ्लो में चल रहा होता है तो उसी फ्लो के साथ आप भी चलना पसंद करते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे वही चलता है जो ट्रेंडिंग होता है, और ट्रेंड से आप हटे तो आप सोशल मीडिया से बाहर हटे, ये भी एक रियलिटी फैक्ट वाली चीज है। इसीलिए शायद पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका हिस्सा बन रही है, उन्हें भी मालूम है ट्रेंड फॉलो नहीं करा यूथ को हमने नहीं करा तो ये जेन जी हमको सपोर्ट नहीं करेगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

एस जटरा लड़े नैनों के पेचे दूर से मुझको खेचे लड़े नैनों के पेचे दूर से

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कर गई चुल।
1: वुमेन्स राइट की जो बात है ना, वो आज आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा आर्टिकल क्या वुमेन राइट्स पे वर्क कर रहा है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब भी आप किसी भी लॉफुल चीज के सामने जाएंगे तो मेन और वुमेन दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल लेवल पे सुना जाएगा, समझा जाएगा, तब कोई डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक मेल है उसे ज्यादा समझा जाएगा या सुना जाएगा, इक्वल वहां पर दोनों जन होने चाहिए लॉ के सामने। कोई भी लॉ वाली चीज के सामने आप जा रहे हैं, आर्टिकल 15 बताता है नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी जेंडर में भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की चीजों को लेके, कि ये सिर्फ फीमेल्स को मिलेगा, ये सिर्फ मेल को मिलेगा। हर अधिकार दोनों को मिलना चाहिए, जेंडर वाइज डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज। आज के टाइम में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मेल के लिए है उतनी ही फीमेल्स के लिए भी होनी चाहिए, पर हो सकता है फीमेल्स के लिए थोड़ी ज्यादा हो वुमेन एम्पावरमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, बट इक्वल राइट्स दोनों के लिए होने चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल 16। और इसी आर्टिकल को अगर आप अंदर से देखेंगे तो इक्वल पे, इक्वल वर्क स्पेस, वहां पर इक्वल तरह से आपको ट्रीटमेंट मिले, ये भी उस आर्टिकल के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे तो वहां पर डॉटर को अपने जो घर, जो इनलॉस का घर है वहां भी, और जो उसका रियल घर है मम्मी पापा वाला, वहां भी इक्वल राइट्स हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेके। तो ये जो पूरी तरह से एक महिला को सशक्त बनाते हैं कि नहीं, अगर वो सोचे कि मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं करा है, एडुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है मुझे, तो ये उसका राइट है कि वो घर पे बोले कि अगर बेटा पढ़ने जा रहा है तो मुझे भी जाना है, उसे ये मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। अब आप इसमें फायदा उठाने लगे कि आपको एक मिला है तो आप कह दो नहीं मुझे दो चाहिए, मुझे तीन चाहिए, मुझे चार चाहिए। इक्वल मींस इक्वल, फिर वो इक्वल बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी एक को अबव या किसी भी एक को नीचे हमें नहीं रखना है। ये आर्टिकल्स हमको समझाते हैं, और वुमेन्स को भी अपनी राइट समझ के और उनके बारे में समझ के ही करना चाहिए, उन राइट्स का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये पावर है लाओ मैं ये बोल देती हूँ ये कर लेती हूँ। नहीं, जहां नीड है, जहां आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, सिर्फ वहां उन राइट्स का यूज करिए। हर जगह पे विक्टिम कार्ड वाली तरह से उन्हें प्ले करना ना शुरू करिए, वो बाकी वुमेन्स के लिए फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

लाइफ में तुमने क्या किया अगर अभी तक तुम एक ऑक्सीजन मास्टर नहीं बने। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ, बट अभी भी चांस तुमने मिस नहीं किया है। रेडियो महारानी अभी भी तुम्हें चांस दे रहा है ऑक्सीजन मास्टर बनने का। अब ये कैसे बन सकते हैं, क्या होना है, मैं आपको बताता हूँ। रेडियो महारानी ने लॉन्च किया था 1 सितंबर को प्रोजेक्ट ऑक्सीजन, जहां पर हमने आपसे ये कहा था कि अगर आप ऑक्सीजन मास्टर बनना चाहते हैं तो बस हमको हमारे इंस्टाग्राम पे आके डीएम करिए, जो रेडियो महारानी के नाम से आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, कि मैं बनना चाहता हूँ ऑक्सीजन मास्टर, और हम आपको बुलाएंगे और एक प्लांट जो है वो प्यारा सा आपको गिफ्ट करेंगे, जो प्लांट आपको अपने घर ले जाके उसे लगाना है और उसके बाद उसकी सेल्फी खींच के हमको शेयर करनी है। और इसी तरह आपके कोई नोन हो उन्हें भी ऑक्सीजन मास्टर बनने का सजेशन दीजिए, और ऐसे ही प्लांट लगा लगा के हम बनेंगे ऑक्सीजन मास्टर। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले, जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती हैं,

या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद।

फरीदाबाद वालों प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? अरे बहुत कम दिन बचे हैं और उस दिन वो जो बड़ा सा अमाउंट है वो आप ही को जीतना है। 89.6 रेडियो महारानी।

शार यहाँ पर आपके साथ और मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद हाफ मैराथन की, जहाँ पर रन जो है वो होने वाली है 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की फन रन भी होने वाली है। और ये कहाँ होने वाली है? सूरज कुंड मेला ग्राउंड पे। और 27 तारीख जो है वो आपने अपने कैलेंडर पे ऐसे सर्कल बना के रख लेनी है और सुबह सुबह पहुंच जाना है इस रन के लिए। बट उससे पहले एक काम आपको और करना है, अपना रजिस्ट्रेशन रन के लिए कराना। और रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपको जाना है www.faridabadhalfmarathon.in, इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है। और ये जो रन है इसके पीछे का जो कॉज है, जो मोटिव है, वो बहुत अच्छा है, हेल्दी हरियाणा और प्लस नशा मुक्त हरियाणा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

ये जो आईलाइनर है ना यार, ये तुम पे कितना ही सूट कर रहा है, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है। अक्सर हम तारीफ में बोल देते हैं, बट ये आईलाइनर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। कभी जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तब ये आईलाइनर नहीं था, तब ये सिर्फ एक कोयला था। और मैं आईलाइनर की हिस्ट्री बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराना एक फैशन पार्ट बना हुआ है, जहां पर पहले लोग इसे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाते थे बहुत सारी चीजों से। और ये आईलाइनर की शुरुआत जो है वो एशियंट इजिप्ट, मतलब 5000 साल पहले हुई थी, जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था इसे अपनी आंखों के ऊपर लगाने के लिए, जहां पर वो तेज धूप से बचाता था, उन्हें बहुत सारी चीजों से राहत देता था, आईज इन्फेक्शन से बचाता था, क्योंकि ये डायरेक्ट आईज पे प्रभाव नहीं पड़ने देता था, तो ये बहुत सारी चीजों से बचा रहा था, तो लोग तब लगाते थे। फिर क्वींस हो गए, किंग्स हो गए, या उसके बाद की जो जनरेशन हो गई, वो मेल और फीमेल दोनों लगाते थे। बट धीरे धीरे फीमेल ब्यूटी का पार्ट बनता चला गया, इसे लगाने के तरीके बदलते चले गए, फिर ये पेंसिल के रूप में आ गया, और उसके बाद आज अलग अलग टाइप पे, जैसे आपको बोल्ड चाहिए, आपको थिन चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग यूज करके अपने आईलाइनर्स को लगा सकते हैं और एक ब्यूटी सिंबल सामने वाले इंसान को दिखा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तुम्हारा वो आईलाइनर यार आज बहुत अच्छा था, वो जो एक्स्ट्रा आई के बाहर तुमने निकाला था वो तो क्या ही लुक दे रहा था। तो आपको ये हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि ये आज से नहीं, 5000 साल पहले से फीमेल्स लगाती हुई चली आ रही हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: इस सोसाइटी में ना नारी बहुत सारे रोल जो है वो प्ले करती है, कभी एक वर्किंग वुमेन का, कभी एक टीचर का, कभी किसी के रोल मॉडल बनने का। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और एक ऐसी ही नारी आज मेरे साथ है जो हमारे लिए रोल मॉडल भी है, जो ऑथर भी है, जो टीचर भी है, और वर्किंग वुमेन तो ऑब्वियस सी बातें है ही, प्लस अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। प्राची भारद्वाज आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है। प्राची, पहले तो अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए, एज अ टीचर जर्नी आप कैसे आए, या कोई और फ्यूचर में कोई लड़की अगर इस टीचिंग जर्नी में आना चाह रही है तो उससे अगर आप गाइड करना चाहें।
1: ओके, सबसे पहले तो नमस्कार टू ऑल माय ऑडियंस एंड थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू टू रेडियो महारानी मुझे आज बुलाने के लिए। इट्स अ ब्लेसिंग कि आप एक वर्किंग वुमन है, एंड मैं सारी गर्ल्स को जो भी आज मुझे रेडियो महारानी के प्लेटफॉर्म के थ्रू सुन रही हैं, यही मैसेज देना चाहूंगी कि वर्क हार्ड, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई फील कि एक ब्लेसिंग है कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ और उसके साथ एक टीचर हूँ। तो चैलेंजेस तो सर हर जगह है, नो डाउट। लाइफ विदाउट चैलेंजेस आई थिंक किसी के भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी एक एग्जांपल को लीजिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी लाइफ में चैलेंजेस हो। तो बीइंग अ टीचर कुछ चैलेंजेस जो होते हैं, सबसे पहला कि बहुत टायरसम जॉब है। आपको हमेशा एक स्माइलिंग फेस के साथ रहना है, ठीक है। आप टायर्ड हो, आप परेशान हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हो, बट आप जब क्लास में एंटर करेंगे, आप जब क्लास में पढ़ाएंगे, तो यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड आपके फेस पे वो स्माइल होनी चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए, एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ओके। और चैलेंजेस तो मैं यही कहूँगी कि यही है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि हमें बहुत डाइवर्स काइंड ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जिनके साथ हमें डील करना पड़ता है। वो अगेन कहीं आपको उनकी मदर बनना पड़ रहा है, कहीं आपको उनका फ्रेंड बनना पड़ता है, कभी आपको उनका एक आई वुड से काउंसलर बनना पड़ रहा है। तो ये आप एक टीचर होने के साथ साथ बहुत अलग रोल्स भी प्ले करेंगे, तो ये भी एक चैलेंज है कभी कभी कि आप एक सिर्फ टीचर नहीं है, आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट डिलीवर नहीं कर रहे हैं, रादर आप उनकी मामा भी बन रहे हैं, कभी आप उनके लिए फ्रेंड भी बन रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो आई वुड से अ चैलेंज, बट कहीं ना कहीं आई फील इट इज अ प्लस पॉइंट ऑल्सो कि आप डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में आपको फिट होना आता है। सो दिस इज आई वुड से फ्यू चैलेंजेस जो मुझे लगता है कि एक टीचर को होंगे।
0: अब एक टीचर यहाँ पर है और उससे हम ये डिजिटल चेंज के बारे में नहीं जानेंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी, तो थोड़ी देर बाद हम लौट के वापस आते हैं और प्राची से ये डिजिटल दुनिया के चेंजेस के बारे में या डिजिटल दुनिया में चेंजेस आने की वजह से जो हमारे हर्डल्स आ रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: फरीदाबाद गेम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्ले सेंट प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो दिल से दोस्ती क्लब के साथ।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766 220036।

0: तो हमारी जो आज की गेस्ट है ये सिर्फ टीचर नहीं है, ये एक ऑथर भी है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ, और प्राची आप टीचर के साथ साथ एक ऑथर भी हैं। लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ये लिखने का शौक कहाँ से आ गया?
1: ओके सर, सो मैंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है जो पब्लिश हुई, एंड दैट इज अनबॉदर्ड। तो ये एक शिफ्ट था जो कि मेरे को लगा कि अब मैंने टेंसेस बहुत पढ़ा लिए हैं, जिससे बच्चों की मैंने टेंसेस बहुत सिखा दिए, बट अब मुझे ऐसा कुछ लिखना है जो एक्चुअल में उनकी लाइफ रिफ्रेम कर सके। सो मैंने एक बुक लिखी अनबॉदर्ड, और जैसे कि टाइटल ही खुद कह रहा है कि यू हैव टू लीव ऑल द नेगेटिव एनर्जी, तो ये नो डाउट बच्चों के लिए, बट आई वुड से फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर इन देयर टीन्स एंड फॉर पीपल लाइक अस दोज हु आर इन देयर थर्टीज। ये बुक ये थी जब मैंने देखा कि आजकल बच्चा बहुत परेशान है उन कमेंट्स से जो कि उनके फ्रेंड्स उनको पास ऑन कर रहे हैं, हम एज अ वर्कर्स परेशान हैं उन कमेंट्स से जो कि एक्चुअल में कोई यूज के नहीं है। तो अनबॉदर्ड इज अ बुक जो कि आपको ये बताता है कि लाइफ में बहुत लोग कमेंट करेंगे, बट आपको कैसे अनबॉदर्ड रहना है, आपको अपनी लाइफ पे कैसे फोकस करना है, दिस इज समथिंग जो मैंने इस बुक में लिखा। तो ये एक नो डाउट शिफ्ट था रेड पेन से एक राइटिंग पेन के टुवर्ड्स जो मैंने किया, एंड इट वाज एन एक्सपीरियंस जो कि मैं चाहती थी कि मैं कुछ लिखूं। एंड ये सब टॉपिक्स मुझे बच्चों से ही आए कि जो मैं उनको देख रही हूँ आजकल वो पीयर प्रेशर में है, आजकल वो डिप्रेशन में है, वो आजकल अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं। एंड नॉट ओनली बच्चे, अगर मैं बात करूँ हमारी एज अ यंग जनरेशन, हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रेशर में है, हम लोग कंपैरिजन में है, हम लोग उन सारे चीज़ों से बाउंडेड है जो कि एक्चुअल में किसी भी वर्थ की नहीं है, बट वो हम लोग इतना ज़्यादा उन चीज़ों को मैटर कर रहे हैं कि वो हमारे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम है अनबॉदर्ड, एंड अब वो सारे ही आपके अमेजोन एंड आपके सारे यू कैन से प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। सो यस, दिस वॉज अ शिफ्ट, एंड नो डाउट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा क्लासरूम्स का उसी ने मुझे मोटिवेट किया, क्लासरूम एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस आई वुड रादर से, कि जिसने मुझे मोटिवेट किया ये बुक लिखने के लिए। एंड या द बुक इज डूइंग गुड,
0: ऑल द वेरी बेस्ट आपकी ये बुक के लिए जो अभी आई है। आई होप बहुत सारे लोग उसे रीड करें, बहुत सारे लोग इस पे रिव्यू दें, बहुत सारे लोग इस पे फीडबैक दें, और आप आगे ऐसे भी और बुक्स जो हैं वो लिखते रहें। एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, उन्हें एक टीचर की लाइफ से रिलेटेड, एक स्कूल की लाइफ से रिलेटेड फिर से वो सारा रिकैप देने के लिए। एंड कीप लिसनिंग टू 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके। गंगा।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हिमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले, जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोज

करती है। जैसे लैट्रिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

0: देखो हम बच्चे हैं और हमारे पास सबसे बड़ा टूल होता है एक्सक्यूज देना जब भी हमसे कोई काम टीचर सामने से बोल दे। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा यही आने वाला है, कोई ऐसा क्लास का इंसिडेंट जहाँ पर आपने होमवर्क दिया और बच्चे ने नहीं किया और एक्सक्यूज सुन के आपको लगा यार ये क्या फनी बात कर रहा है, ये क्या बिल्कुल ऐसी इलॉजिकल बात कर रहा है।
1: होमवर्क तो सर नो डाउट बहुत बच्चे नहीं करके आते हैं एंड एक्सक्यूजेस आई वुड से कॉमन एक्सक्यूजेस यही रहते हैं, कॉपी भूल गया, कर रहा था, टेबल पे कॉपी रह गई। और एक एक्सक्यूज जो मुझे अभी फिलहाल याद आ रहा है वो ये था कि मैम मेरे ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो गई है, तो आई वॉज लाइक ओके, बट वो एक नोटोरियस बच्चा था लाइक, तो मुझे था कि एक बार क्रॉस चेक करती हूँ कि लेट मी कॉल द पेरेंट एंड आस्क कि ऐसे घर पे कुछ मिस हैपनिंग हुई है। एंड जो उन्होंने कहा था कि ग्रैंड फादर की डेथ हुई है, लकीली वो या आई वुड से इट वाज अ नॉट गुड थिंग फॉर हिम, वो ग्रैंड फादर ने फोन उठा लिया एंड आई वाज लाइक

0: सर कुछ मिस हैपनिंग हुई है घर पे, तो उन्होंने कहा कि किसकी मैम, मैंने कहा कह रहे हैं कि बाबा की डेथ हो गई है, कह रहे मैं तो बाबा ही बोल रहा हूँ। तो बच्चा देखिए बच्चा है फिर से ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बच्चे बहुत आई वुड से कभी कभी फनी एक्सक्यूजेस देते हैं, और एक टीचर को पता होता है सर कि कब एक्सक्यूज है कब जेन्युइन रीजन है।
1: अच्छा अगला एक सवाल मैं इसी में पूछना चाहूंगा आपको, अगर हम एक दिन के लिए वापस स्टूडेंट बना रहे तो आप अपनी कौन सी टीचर के पास वापस जाना चाहोगे या कौन सा सब्जेक्ट वो है जिसे अटेंड करना चाहोगे?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि वहाँ पे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छे थे, बट हाँ अगर किसी टीचर की क्लास मैं दोबारा से लाइक अटेंड करना चाहूँ तो वो अगेन मेरी इंग्लिश क्लास ही रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक मोमेंट ऐसा था जो मुझे लगा कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहूंगी, तो वो मेरी इंग्लिश क्लास ही रहेगी। एंड टीचर लाइक टीचर का मैं नाम लूँ तो मेरे सारे इंग्लिश टीचर्स, जैसे चलो आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपने इंग्लिश टीचर्स को भी एक आई वुड से सैल्यूट या फिर उनको भी एक रिकॉग्नेंस देना चाहूँगी, जैसे जगदीश सर थे हमारे इंग्लिश के, हमारे अशोक सर थे, निशा मैम थी, तो सारे टीचर्स थे, सबकी मैं क्लासेस दोबारा अटेंड करना चाहूँगी। एंड वो सारे जैसे वो पढ़ाते थे कहीं ना कहीं आज मैं उस चीज़ को कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि सीखा वहीं से ही है, जो जैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया है उसी में ही कुछ आई वुड से एडवांसमेंट करके आज मैं पढ़ा रही हूँ। तो आई थिंक इंग्लिश क्लासेस एंड अपने सारे इंग्लिश टीचर्स, नो नॉट अ स्पेसिफिक वन, बट हाँ तो याद भी नहीं है आई वुड से सबका नाम, बट हाँ जी इंग्लिश टीचर्स मेरे जो थे उनकी क्लासेस मैं दोबारा अटेंड करना जरूर चाहूंगी कभी लाइफ में मौका मिला तो।
1: तो ये है प्राची भारद्वाज जो खुद एक टीचर हैं, और इन्हीं से हम टीचिंग की जर्नी, स्टूडेंट्स की जर्नी और ओवरऑल एक एज अ टीचर क्या फील होता है उसका समझ जानने की कोशिश कर रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत प्यारी है। एक्ट्रेस स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: चले हैं, ठंड पै गई है, कार चलिए
1: नहीं पहले जब

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर विद बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
5: विद बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, कुछ वक्त ऐसा होता है ना दिन में जब लंच हो चुका होता है, काम सामने पड़ा होता है, लेकिन दिमाग बोलता है कि भाई आज रहने देते हैं, आज बिल्कुल मूड नहीं है काम करने का। और बिल्कुल इसी मूड में अगर आप भी 2 से 4 के बीच थोड़ा ब्रेक, थोड़ा एंटरटेनमेंट और थोड़ी सी फिल्मी दुनिया चाहते हैं ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहां बातें होंगी उन स्टार्स की जो स्क्रीन पर नजर आते ही अटेंशन ले जाते हैं, उन फिल्म्स की जो रिलीज से पहले ही हेडलाइंस बना देती हैं, और उन फिल्मी किस्सों की जो सुनते ही बोलने का मन करे कि अच्छा इस मूवी में ये भी हुआ था क्या। तो लंच के बाद वाली नींद को थोड़ा साइड में रखिए भाई, क्योंकि मैं पलक आ चुकी हूँ शो फिल्मी फ्लेवर को लेकर ऑनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी को छटके पर। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले सुना देती हूँ आपको एक गाना, एंजॉय कीजिए ये गाना, लौटूंगे फिर इसी जगह। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

0: फरीदाबाद गेम शो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेस एंड प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, कुछ पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं होते ना, वो फिल्म का मूड पहले ही सेट कर देते हैं। और संजय लीला भंसाली जी की लव एंड वॉर से विक्की कौशल का फर्स्ट लुक सामने आया है, जो काफी इंटेंस है। और इस पोस्टर में विक्की एकदम सीरियस और इंटेंस एक्सप्रेशन के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके हाथ में लाइटर है, सिगरेट, और पूरे लुक में रेट्रो टच है। और इंटरेस्टिंगली मेकर्स उनका अभी एक और पोस्टर लाने वाले हैं, जिसमें उनका कंप्लीट लुक रिवील होगा। मतलब भंसाली साहब ने अभी भी सिर्फ ग्लिम्स दिया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है देखने को। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर, मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ।

Hello everyone, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. To हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज़ नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. Thank you. Doctor calling.

0: सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच.
1: रेडियो महारानी.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और लव एंड वॉर की बात निकली है तो विक्की कौशल के बाद आलिया भट्ट के लुक की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस फिल्म के लुक्स एक एक करके काफी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं भाई। और आलिया का फर्स्ट लुक सामने आया तो वो एकदम कैबरेट इंस्पायर्ड अवतार में नजर आई हैं, और सोशल मीडिया पर उनके लुक को लेकर कंपैरिजन भी होने लगे हैं। किसी को अनुष्का शर्मा की वाइफ दिखी तो किसी ने कियारा आडवाणी के टॉक्सिक लुक से कंपैरिजन किया है। लेकिन इस पूरे डिस्कशन में एक कॉम्प्लीमेंट ऐसा आया जो आलिया के लिए डेफिनेटली स्पेशल था, और वो है जीनत अमान जी का कमेंट। और जीनत अमान ने आलिया के पोस्टर पर कमेंट करते हुए लिखा कि वाओ, फाइनली संजय लीला भंसाली हैज इंट्रोड्यूस्ड द शो गर्ल। और आलिया ने भी रिप्लाई में बताया कि सेट पर उनकी टीम जीनत जी के बारे में काफी बातें करती थी, इसलिए उनका ये कॉम्प्लीमेंट उनके लिए और भी स्पेशल था। मतलब एक तरफ भंसाली की सिग्नेचर वर्ल्ड, दूसरी तरफ आलिया का रेट्रो इंस्पायर्ड लुक, और ऊपर से जीनत जी की अप्रूवल भाई उसमें। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब लव एंड वॉर में ये लुक स्टोरी में क्या कहानी लेकर आएंगे ये तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा, और ये मूवी आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी 21 जनवरी 2027 को। तो अभी थोड़ा सा वेट आपको और करना पड़ेगा। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर और मैं हूं पलक आप सभी के साथ।

कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: कभी कभी फिल्म देखते हुए ऐसा लगता है कि भाई स्टोरी चल रही है या बस सीन्स एक के बाद एक आ रहे हैं, और ऐसा ही कुछ रिएक्शन आ रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म द वन को लेकर। फिल्म की कहानी एक मुंबई बेस्ड इंजीनियर और उसकी वाइफ के अराउंड है, जो एक विलेज में प्रॉपर्टी के काम से जाते हैं और वहीं प्रॉपर्टी एक हॉन्टेड फॉरेस्ट के अंडर होती है। अब इंजीनियर साहब है भाई फुल रैशनलिस्ट मोड में, भूत पुरानी परंपराएं और रीति रिवाज किसी चीज पर यकीन ना करने वाले, लेकिन जंगल में पहुंचते ही कहानी में एंट्री होती है सुपर नेचुरल पावर्स, एविल स्पिरिट्स, डिवाइन बुल्स और देवीज की। और इस मूवी में अनूप सोनी, श्वेता तिवारी, सुनील ग्रोवर और मनीष पॉल भी नजर आते हैं। लेकिन रिव्यूज की बात करें तो फिल्म को क्रिटिक्स से काफी नेगेटिव रिस्पांस मिला है। स्टोरी के साथ कॉमेडी, फैंटेसी और फोकलोर को मिक्स करने की कोशिश की गई है, लेकिन कई रिव्यूअर्स को स्क्रीन प्ले और लॉजिक काफी वीक लगा, और एक रिव्यू तो इतना अनइम्प्रेस्ड था कि रेटिंग मिली सिर्फ 0.5 स्टार। मतलब जंगल हॉन्टेड है या नहीं ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन रिव्यूज देखकर लग रहा है कि ऑडियंस को डर भूत से ज्यादा फिल्म के रन टाइम से लगा। भाई चलिए, अब रिव्यू तो मैंने आपको बता दिया है और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। एंजॉय कीजिए ये गाना। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर विद बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स.
5: विद बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स.
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अभी हम बात कर रहे थे द वन की, जहां फिल्म को लेकर रिव्यूज में अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी एक चीज ऐसी भी है जो थोड़ी इमोशनल है और म्यूजिक लवर्स के लिए खास भी। फिल्म में आपको सुनाई देगी एक ऐसी आवाज जिसे सुनते ही छठ और उस फेस्टिवल से जुड़ी यादें अपने आप याद आ जाती हैं। जी हाँ, वो आवाज है श्रद्धा सिन्हा जी की। दरअसल मेकर्स ने दिवंगत गायिका श्रद्धा सिन्हा जी को ट्रिब्यूट देते हुए उनका पॉपुलर छठ गीत पहले छठी मैया फिल्म में इंक्लूड किया है। और ये गाना 2016 में रिलीज हुआ था। लेकिन श्रद्धा जी की आवाज की खासियत ही कुछ ऐसी है कि साल बीत जाए, गाना पुराना हो जाए, फीलिंग कभी पुरानी नहीं होती। और द वन में जब ये आवाज छठ और वन देवी से जुड़ी कहानी के बीच सुनाई देती है तो फिल्म को एक अलग कल्चरल टच भी मिलता है। मतलब फिल्म की कहानी चाहे आपको कैसे भी लगे, लेकिन श्रद्धा जी की आवाज सुनते ही एक चीज तो पक्की है कि यादें जरूर फ्रेश हो जाएंगी। और अब गानों की बात मैंने कर ही दी है तो वक्त हो चुका है एक गाने का। एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: तो अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर देखते वक्त हर एपिसोड के बाद ये सोचना पसंद है कि भाई असली विलन है कौन, तो नेटफ्लिक्स की न्यू रिलीज शक ट्रस्ट नो वन आपकी क्यूरियोसिटी जरूर जगाएगी। स्टोरी का हुक ही काफी इंटरेस्टिंग है। एक मदर अपनी न्यू बॉर्न बेबी को हॉस्पिटल में लूज कर देती है और फिर हर बर्थडे पर उसे एक छोटी सी अननोन गर्ल की फोटो मिलती है। और स्टार्टिंग के एपिसोड क्रीपी एटमोसफेयर और मिस्ट्री के साथ काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है रिव्यूज के मुताबिक शो में इतने ट्विस्ट और साइड स्टोरीज आ जाती हैं कि मेन क्वेश्चन ही पीछे छूट जाता है कि बेबी आखिर है कहाँ। और जब फिनाले में मिस्ट्री सॉल्व होती है तो कुछ व्यूअर्स को लगता है कि इतने सारे ट्विस्ट के बाद रिवील उतना इम्पैक्टफुल नहीं था जितनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हुई थी। लेकिन एक नाम की परफॉर्मेंस को काफी प्रेज मिल रही है और वो है जेनिफर विंगेट की। उनका कैरेक्टर साक्षी काफी कंट्रोल्ड और मिस्टीरियस है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है कि वो कुछ ना भी बोले ना तो भी आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो अगर आप जेनिफर विंगेट के फैन है या मिस्ट्री थ्रिलर के साथ थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं तो शक ट्रस्ट नो वन को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं आरजे पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी को छटके पर।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, अभी तक हमने यामी गौतम को अलग अलग कैरेक्टर्स में देखा है, लेकिन इस बार मैडम आ रही हैं एकदम भाभी तबाही मोड में। यामी की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म नई नवेली का पहला गाना रिलीज हो गया है और नाम है भाभी तबाही। और ये गाना है एकदम शादी वाले माहौल का, जहां नई भाभी की मुंह दिखाई चल रही होती है और यामी पहले तो बिल्कुल शांति से बैठी होती है, लेकिन जैसे ही उनके देवर उन्हें चैलेंज करते हैं, बस फिर क्या, मैडम सेंटर स्टेज संभाल लेती है और शुरू होता है भांगड़ा, देसी डांस, रैप और हिप हॉप का फुल ऑन मिक्स। मतलब सामने देवर ने सोचा होगा कि भाई भाभी को चैलेंज करके कूल बन जाऊंगा, लेकिन भाभी ने डांस फ्लोर पर आकर पूरा गेम ही पलट दिया। गाने के लिरिक्स वायु ने लिखे हैं, कॉम्पोजिशन जीवी प्रकाश कुमार का है और नीति मोहन की आवाज इसमें एनर्जी और कैरेक्टर ऐड करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नई नवेली में यामी पहली बार बड़े पर्दे पर एक डायन का रोल प्ले कर रही है। और ये फिल्म आपको 16 अक्टूबर को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। अब देखना यह है कि भाभी तबाही सिर्फ गाने में तबाही मचाती हैं या पूरी फिल्म में ही आग लगाई है। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक, आप सभी के साथ ओनली 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के फिल्मी फ्लेवर को यही शटर डाउन करने का। आज भी फिल्मी दुनिया के कुछ नए किस्से जाने, कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिली, और बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी नए फिल्मी अपडेट्स और नए किस्सों के साथ। तब तक आप इंजॉय कीजिए ये गाना, अपना मूड मस्त रखिए और स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी को छोड़ के। मैं हूँ पलक, आप सभी के साथ मिलूंगी कल इसी जगह। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: कुछ कुछ कुछ हटके।
1: रो लो जाएंगे, मत करो।

0: 89.6 FM कुछ हटके
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सुन जरा, चलो करें कुछ मजा।
2: नया घर लेना मतलब नए सपने, नई उम्मीदें और कभी कभी नए मेहमान। एक नया घर लेना लाइफ का बड़ा अचीवमेंट होता है, पर जब घर के साथ एक भूत मुफ्त मिले तो
3: नहीं। ये मेरा घर है।
2: शर्मा फैमिली गोवा शिफ्ट होती है और एक हेरिटेज लुक वाला बंगलो रेंट करती है, नाथ विला। भाई नाम ही इतना क्लासी है तो भूत भी वीआईपी होगा। मोहल्ले वाले वॉर्न करते हैं, भाई हॉन्टेड है, पर इंडियन पेरेंट्स को सिर्फ 2 महीने का रेंट दिख रहा होता है। घर में अजीब चीजें होने लगती है, टीवी खुद चलना बंद, फ्रिज से आइसक्रीम गायब। मतलब भाई भूत भी फुल सैवेज मूड में है, पर छोटा बंकू भूत से दोस्ती कर लेता है। भूतनाथ अंकल भी सोच रहे होंगे, अरे यार ये डर क्यों नहीं रहा?
4: कान्हा भूत हूँ।
5: कान्हा भूत नहीं होते? अच्छा, तो तुम यहाँ पर रहने आए हो?
2: धीरे धीरे पता लगता है कि नाथ साहब ही इस घर के असली मालिक हैं और यहीं अटक गए हैं। ईएमआई का लोन चुकाना पड़ा होता तो पहले ही स्वर्ग सिधार जाते। अब बंकू की मिशन मोड एंट्री होती है, भूत को फ्री करना है। एक तरफ स्कूल का होमवर्क और दूसरी तरफ भूत की मोक्ष यात्रा। बचपन काफी स्ट्रेस में चल रहा था, आखिरकार नाथ अंकल स्वर्ग एक्सप्रेस पकड़ के निकल लेते हैं और घर अब हॉन्टेड नहीं रहा। लेकिन शर्मा जी की टेंशन खत्म नहीं हुई, अब उनको नया टेनेंट ढूंढना है। घर सस्ता मिले तो एक बार चेक कर लो, कहीं घर के साथ भूत मुफ्त ना मिल रहा हो, क्योंकि हर भूत भूतनाथ नहीं होता।
1: मेरे

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: से जीने वाला आशिक।
1: रुक जाओ दिल दीवाने, पूछो तो मैं जरा।
0: यूरोप के एक सफर में मिले, टकराए, लड़ते झगड़ते दोस्ती हो गई, पर प्यार समझने में देर लग गई।
2: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: जब सिमरन एक तय की गई शादी के लिए इंडिया गई, राज ने फैसला किया प्यार को जीतना है, पर परिवार के आशीर्वाद के बिना नहीं। एक तरफ संस्कार, दूसरी तरफ सच्चा प्यार, एक तरफ मजबूरी तो दूसरी तरफ जुनून। राज ने घर से रिश्ता जोड़ा, सबका दिल जीता, लेकिन बाबूजी का पत्थर दिल पिघलाना अभी बाकी था। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया।
3: जा सिमरन, जा, जा जीले अपनी जिंदगी।
0: इसलिए कहते हैं

0: ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ
1: ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
2: देखो, बॉयफ्रेंड्स ना फिल्मों की तरह होते हैं, कुछ टाइम पास तो कुछ ब्लॉकबस्टर्स।
3: मोहब्बत हो या म्यूजिक, दोनों अधूरे सुरों में भी खूबसूरत लगते हैं, और यही है ए दिल है मुश्किल की कहानी।
4: आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म का हीरो हूँ।
3: अयान, एक मस्ती भरा आशिक।
4: जब मैं 2 साल का था, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई।
2: चली गई?
4: मैं भाग गई।
2: मदर तो इंडिया होती है, तुम्हारी मिल्का निकली, भाग गई।
3: जो प्यार को दोस्ती समझता है, जब तक उसका दिल एलिजे के लिए धड़कना शुरू नहीं करता। पर एलिजे के लिए दोस्ती का एहसास गहरा है, लेकिन प्यार का नहीं। मोहब्बत के इस सफर में आती है सबा, जो अयान को प्यार का दूसरा रंग दिखाती है, खुद से प्यार करने का।
5: दरिबा, बड़े वफादार है आप यहाँ, आपकी इजाजत के बगैर बाहर भी नहीं निकलते।
3: लेकिन क्या दिल अपने जज्बात बदल सकता है, या कुछ मोहब्बतें सिर्फ दर्द का गीत बनकर ही जी जाती हैं? क्योंकि कुछ कहानियाँ अंजाम से नहीं, सिर्फ जज्बा

0: तीर हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

से मेरे बारे में वो सारे सच्चा बेबी मैं हूँ वो जिस सबके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे?
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, शराब बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती है। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार श्राप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं,
2: काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू हो जाओ।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
3: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप आपको बताइएगा।
1: आपने ये बता दिया तो
2: सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो प्यार।

0: मौसम आज कैसा भी रहा हो, बट एक चीज तो है कि आज की धूप ना चुभी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ठंडा ठंडा फील जरूर हो रहा था, और ये मुझे ही नहीं, ये पूरे फरीदाबाद को फील हो रहा था।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगले चार घंटों के लिए मैं आ गया हूँ आप सभी के साथ। देखो मौसम ठंडा है, अच्छा कूल सा मौसम लग रहा है, गर्मी फील नहीं हुई, पूरे दिन भर धूप थी उसके बावजूद गर्मी फील नहीं हुई, और बता दूँ आपको आने वाले दिन भी ऐसे ही रहने वाले हैं। इसके अलावा एसी चलाया था क्या कल रात को? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल रात जब खाना खाने के बाद मैं वॉक पर गया तो वहाँ पर जितने भी लोग घूम रहे थे वहाँ पर एक आंटी ने शॉल ओढ़ रखा था। मैंने कहा आंटी इतनी गर्मी तो नहीं आई है अभी, और काफ़ी सारे लोगों ने एसी बंद कर रखे थे। सेम मेरे घर में भी यही हाल था, मैंने भी चलाया बस थोड़ी देर के लिए और फिर थोड़ी देर बाद उसे बंद कर दिया, और उसके बाद थोड़ा ठंडा कूल तो फील हो रहा था। एंड साथ ही साथ अब दो दिन बाद अक्टूबर आने वाला है, इसका एहसास हुआ आप लोगों को? मतलब कितनी जल्दी टाइम बीत रहा है। अभी तो हमने होली सेलिब्रेट की थी, अभी तो हमने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया था, और अभी सितंबर खत्म भी हो गया, तो ऐसे टाइम बीतता जाता है और ऐसे ही आज का टाइम भी बीत जाएगा। मीन्स आज के चार घंटे भी खत्म हो जाएंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही खूब सारे गाने खूब सारी बातें होती रहेंगी यहाँ पे। अब अगर इसी बीच आप लोगों को फरीदाबाद से रिलेटेड बातें करनी है तो मेरा नंबर है सिंपल सा 9654896896, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप लोग। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर हमारा नंबर सेव कीजिए, फिर से रिपीट कर देता हूँ 9654896896, इस पर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अगर मैसेज कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप वॉइस नोट भेजें ताकि आपकी आवाज़ मैं फरीदाबाद की जनता तक सुना सकूँ, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर खूब सारे गाने चलाऊंगा। तो होनी वैसे ये गाना आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर।

सकता है कि आपके पास एक फोन आए और बोले, सर मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपने जो लोन के लिए अप्लाई किया था वो लोन सक्सेसफुल हो चुका है, क्लियर। रेडियो का गौरव। मतलब इतना सा है कि आपके पास कॉल आएगा और बोलेंगे कि लोन अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाने वाला है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ गौरव आपके साथ। एंड जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, कॉल आएगा किसी बंदे का या किसी लेडी का, वो बोलेंगे आपको कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, हम बैंक रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपका लोन सैंक्शन हो चुका है, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग इस भेजे हुए लिंक पर क्लिक कीजिए, अपनी कुछ डिटेल्स फिल कीजिए और आपके पास आपका लोन अमाउंट आ जाएगा। अब वो लिंक में होगा सबसे बड़ा ट्विस्ट, यानी कि आप लोगों को फंसाया जा सकता है। उस लिंक में आपकी सारी डिटेल्स भरवा ली जाएगी और जब बोलेंगे कि हम किसी भी बैंक से बात कर रहे हैं, मान लेते हैं एक्स वाई जेड बैंक का नाम है, वो एक्स वाई जेड बैंक की वेबसाइट भी बनी होगी, बिल्कुल ऑथेंटिक लगेगी। और आप जब उसमें सारी डिटेल्स भरेंगे तो उसमें आपको बोला जाएगा कि अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए, अपना डेबिट कार्ड आईडी डिटेल सब कुछ डाल दीजिए। यहाँ पर ही ट्विस्ट है कि कभी भी बैंक आपसे ओटीपी सीवीवी नहीं मांगता, तो सीवीवी तो गलती से भी मत दीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज़ें कभी भी मत करिए, मतलब किसी भी कॉल पर विश्वास मत कीजिए। और अगर आपका बैंक लोन अप्रूव होने वाला है ना, जैसे आप लोगों ने कहीं अप्लाई कर रखा है, तो फिर बैंक रिप्रेजेंटेटिव से ही बात कीजिए, यानी कि बैंक में जाकर बात कीजिए और जो भी आपका आर एम मीन्स रिलेशनशिप मैनेजर, उनसे बात कीजिए कि क्या हुआ मेरे प्रोसेस का, लोन प्रोसेस का। नहीं तो कोई कॉल आती है और बोलते हैं इस लिंक को क्लिक कीजिए, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उनके भरोसे पे नहीं रहना है, क्योंकि आप सभी के साथ हो सकता है एक अच्छा खासा फ्रॉड। और ऐसे ही बहुत सारे टाइप के फ्रॉड्स फरीदाबाद में बहुत देखने को मिल रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया तो ना जाने कितने सारे फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं, तो सोचिए जरा इसके बारे में। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए गाने खूब सारे चलते रहेंगे।

थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहां शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात ये भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

मौसम तो थोड़ा सा साफ हो गया है, जैसे दो दिन बारिश हुई ना, जैसे सैटरडे को बारिश हुई, फिर उसके बाद संडे को नहीं हुई, मंडे को बारिश हो गई, तो उसकी वजह से आसमान की एयर क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। एंड जो एयर क्वालिटी की बात कर रहा हूँ वो फरीदाबाद दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, 100 से नीचे आ गई थी कल तक तो। और अगर मैं बात करूँ इसके बारे में ज़्यादा, तो मैंने देखी थी स्मॉग मशीन्स लाइक लास्ट वीक देखी थी, इस वीक तो मुझे देखने को नहीं मिली, भगवान न करे कि आने वाले टाइम में देखने को मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्मॉग हो जाए फिर से, गले में खराश हो जाती है, आंखों में जलन हो जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इस बार कूड़ा जलाने वालों पर कार्यवाही की जाएगी ऐसा सरकार कह रही है, और उसी के साथ साथ जो पराली जलाएंगे उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। ऑल्दो फरीदाबाद में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हाँ फरीदाबाद में कूड़ा जलाने वाली शिकायतें तो बहुत ज़्यादा आती है। और आप अगर इन लोगों से बोलेंगे ना कि आप कूड़ा क्यों जला रहे हो, तो वो सामने से बोलते हैं तेरा क्या जा रहा है। तो उन लोगों को बस ये बताओ कि सांस जा रही है हमारे शरीर में, वो सांस हम लोगों की तबीयत ख़राब कर सकती है। इन लोगों को ये चीज़ें समझानी पड़ेगी, कैसे भी करके समझानी पड़ेगी, बट समझाना इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि स्मॉग मशीन्स लास्ट वीक जो मैंने देखी थी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, तो उसमें ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। एक तो पानी ऊपर को फेंकता है, दूसरा पानी ना हर तरफ को फेंकता है, ट्रक फ्रंट से भी साइड से भी। कुछ लोगों को मज़ा आने लग जाता है उस चीज़ में, कुछ लोग उसके साइड में अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, पूरे एक साइड से चला लेंगे पहले, फिर धीरे कर लेंगे, जब ट्रक आगे चले जाएगा फिर उसके लेफ्ट साइड से चले जाते हैं, मतलब दोनों तरफ से गाड़ी धुलवाने के लिए। क्या कमाल के लोग हैं। मैंने ऐसा देखा है बहुत बार। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, और स्मॉग की टेंशन अभी तो मत लो क्योंकि अभी मौसम साफ है, और सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

बाद कितने रुपए हो जाएंगे? लाइक मैं तो बहुत सोचता हूँ इस बारे में। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। कैसे हैं आप सब? बहुत देर हो गई बातें करते हुए। और मैंने सोचा कि देखो, महंगाई तो बढ़ती है, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, वो बढ़ती है, और एट द रेट ऑफ 6% कह सकते हैं, सालाना 6% के रेट पे बढ़ती है। तो मैं ये सोच रहा था कि जो आज हमारे पास अगर 1 करोड़ रुपए हो तो उसमें हम लोग बहुत कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे 1 करोड़ में तो घर भी नहीं आता। आता है, बहुत सारी जगहों पे आता है, बहुत सारी जगहों पे नहीं आता। चलिए उन सब चीज़ों को भी साइड में रख देते हैं। बात करें अगर 6% की रेट से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए की जो रियल वैल्यू है वो हो जाएगी अराउंड 32 लाख रुपए। आप लोगों को शौक लगा ना, मुझे भी बहुत लगा था जब मैंने इसको कैलकुलेट किया। और वैसे रियलिटी ये होती है, जो 1 करोड़ है वो तो 1 करोड़ ही रहेगा, बट आज की डेट में जो 32 लाख रुपए में सामान आ रहा है ना, वो सामान आपका 1 करोड़ रुपए का आएगा। सोचिए 32 लाख रुपए की अगर अभी इस टाइम राइट नाउ कोई गाड़ी आ रही है तो वो 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए की आएगी। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वैसे ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है, हर बार ऐसा हो ज़रूरी भी नहीं है, बट हर बार ऐसा ना हो ये भी ज़रूरी नहीं है। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं, 6% के रेट से हम लोग इन्फ्लेशन को मान रहे हैं, और इसके अलावा हम ये सोच रहे हैं कि चलो 20 साल बाद जो ज़रूरत के सामान है वो अराउंड बढ़ जाएंगे। जैसे आटा, आप सबको पता है साल 2020 कोविड से पहले आटा कितना सस्ता हुआ करता था, चीनी कितनी सस्ती हुई करती थी, बट अचानक से रेट बढ़े थे। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो गई थी बट सप्लाई बहुत कम रह गई थी। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं, मेरे तो बहुत बार सर से ऊपर से चली जाती है, बट ट्राई करता हूँ कि मैं इसको सिंप्लीफाई करके खुद भी समझ लूँ और आपको भी समझा दूँ, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर गाने भी चला दूँ। सुनिए इसका गाने को, रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

कभी आप लोगों ने सपने में अपने आप को फेमस होते हुए देखा? मतलब आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो, सब दुनिया आपको जानती है और सब आपके सामने हाथ हिला रहे हैं, हेलो हेलो हेलो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। पता है ऐसे सपने ना हमेशा साइकोलॉजी, हमारी जो डिजायर्स होती है, ख्वाहिशें जिन्हें हम लोग कहते हैं, या फिर रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े होते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ गौरव आपके साथ। एंड देखो, सपनों की जब हम लोग बात करते हैं तो वैसे तो इस टाइम हम लोग सपनों को डिकोड करते हैं रोज, तो सपनों की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो जाए, बट ज़रूरी ये भी नहीं कि वो सच ही ना हो। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप कभी देखते हो अपने आप को सपने में कि आप बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो चुके हो, लोग आपको जानते हैं, तो मतलब यही है कि आपकी लाइफ में आपको चाहत है कि आपको हर चीज़ में अप्रिसिएशन मिले। और इसके अलावा तारीफ की चाहत है आपके अंदर, या फिर वैल्यू, आपकी कहीं पर वैल्यू नहीं हो रही ना, तो ये सपना दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट और स्पेशल महसूस करना चाहते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है, अपने ऊपर आपको भरोसा होगा अगर, तो ऐसे ही सपने आपको देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे अंदर कुछ बड़ा करने की काबिलियत है और आपका सक्सेस की तरफ एक कदम और हो जाएगा। यानी कि आप अपने गोल के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कामयाबी पाने के लिए आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे कह सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, काफ़ी सारे लोगों को ना पूरी ज़िंदगी भर अटेंशन मिलती ही नहीं है, वो या तो अकेलापन फील करते हैं या फिर इग्नोर महसूस करते हैं, तो ऐसे सपने ये भी दिखाते हैं कि आप भी शायद ये सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं। अब देखो, सपने के सिचुएशन के हिसाब से मतलब होते हैं। अगर आप फेमस होकर खुश

थे तो ये पॉजिटिव साइन है, ये दिखा रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। और इसके अलावा अगर आप फेमस होकर भी दुख थे, परेशान थे या फिर डरे हुए थे, तो मतलब यही है कि आपको रियल लाइफ में भी लोगों के जजमेंट से डर लगता है। तो देखो, कभी भी पब्लिक फेयर तो होना ही नहीं चाहिए। ये बात आप सभी को मैं बोल रहा हूँ जिसको सबसे ज़्यादा पब्लिक फेयर है, तभी तो माइक के पीछे बैठ के बात कर रहा हूँ। चलिए, इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, ऐसे ही रोज़ाना सपनों को डिकोड करते रहेंगे। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आप लोग एशियन गेम्स को फॉलो कर रहे हो? क्योंकि इंडिया के मेडल्स बढ़ते जा रहे हैं। टोटल 48 मेडल्स हो गए हैं टीम इंडिया के। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। 22 ब्रोंज बोलूं, 21 सिल्वर बोलूं और 5 गोल्ड बोलूं, तो आप इन तीनों को एक साथ ऐड कर देना, क्योंकि टोटल बनता है 48 मेडल्स और टीम इंडिया ने अब तक 48 मेडल्स के साथ ये मतलब अपना पोजीशन बना रखी है। और अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन भी काफ़ी अच्छी तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो इंडिया से ऊपर हैं। बट अभी इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो 11 और 12वें नंबर पर ट्रेल कर रहा है, मतलब बार बार कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और इसी के साथ साथ सबसे पहले नंबर पर है चाइना 135 गोल्ड मेडल्स के साथ। वहीं पर जापान की अगर मैं बात करूं, वो भी 42 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे सेकंड नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है साउथ कोरिया 22 गोल्ड मेडल्स के साथ। और एक सिंपल सी बात बोलूं मैं आप लोगों को कि यहाँ पर ना बचपन से एक चीज़ सिखाई गई थी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब। बट आज की डेट में ये सब चीज़ें चेंज होते जा रही है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया भी कुछ अच्छा करके दिखाएगा। जैसे कि पीटी उषा का 42 साल का रिकॉर्ड, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंडिया की ही लड़की ने। 400 मीटर ब्रोंज का मेडल, 400 मीटर रेस में ब्रोंज मेडल लेकर आई हैं और पूरे देश को मैं बोलूँगा प्राउड फील करवाया। नाम है इनका विद्या रामराज और इन्होंने 400 मीटर जो रेस थी वो कंप्लीट करी 54 सेकंड्स में, 54.75 सेकंड टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं। और 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में ये रिकॉर्ड बनाया था पीटी उषा ने, जिसमें उन्होंने 55 सेकंड में पूरा 400 मीटर्स कंप्लीट की थी। बट उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है आज किसने? विद्या रामराज ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। एंड इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर जुड़े रहिए, क्योंकि आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजते रहेंगे। गौरव है मेरा नाम, गाने और बातें यूँ ही चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

ये वाला हफ्ता ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जाने वाला है, क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड है, दूसरा फ्राइडे को मूवी आ रही है, तीसरा इंडिया के दो दो मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? देखो, एक बात मैं यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ सभी से कि ये वाला वीकेंड ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज तो क्या है, मंगलवार। मंगलवार से ही मुझे वीकेंड की इतनी ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है कि देखो, पहले तो कल की बात करें तो कल मैच है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, सेकेंड ओडीआई, और हो सकता है एक और शतक देखने को मिल जाए विराट कोहली के बल्ले से, और मैं तो देखना चाहूँगा पहले तो। दूसरी चीज़ जो है इंटरेस्टिंग वो ये है कि 3 अक्टूबर को भी है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, तो शायद एक और शतक देखने को मिल जाए विराट कोहली के बल्ले से। और उसके अलावा एशियन गेम्स में भी हमारा सेमीफाइनल मैच है, अब वो किसके साथ है ये भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। बट उसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि देखो, सिंपल सी बात ये है कि 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली कहाँ गए थे, याद करो जरा। मैं बोलूँगा पानाजी गए थे, पंजी बोलते हैं जैसे, वहाँ पर सत्संग अटेंड किया था और फिर उसके बाद वापस आए थे वहाँ से। बट उस मूवी का थर्ड पार्ट आ रहा है, द कंक्लूजन, तो इसका इंतज़ार तो सभी लोग कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार बोल लो, क्योंकि मुझे सच में इसके पहले दोनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगे। तो मैं तो ये मूवी देखने ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को आ रही है, और उससे पहले 1 अक्टूबर की बात करें तो सुबह 10 बजे से मैच शुरू हो रहा है नेशन जापान में, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, सेकेंड सेमीफाइनल जैसे बोलेंगे। और अगर इंडिया जीत गई तो फिर फाइनल्स में पहुंच जाएंगे, और फाइनल्स में फिर मजा ही तो आ जाएगा। और अभी किसके साथ मैच होने वाला है ये डिक्लेयर हो जाएगा, डोंट वरी। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए ढेर सारे गाने यूं ही बजते रहेंगे। गौरव हूं मैं आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं शो HR 896।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद गेम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
2: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
1: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
2: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से
1: प्ले सेल प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
2: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
1: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
2: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है, ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें. डॉक्टर कॉलिंग.

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

अनस्टॉपेबल था ये गाना। और अनस्टॉपेबल तो इस टाइम बहुत सारी मोबाइल फोन कंपनीज थी जो 13 महीने का रिचार्ज करवा रही थी। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। 28 दिन के हिसाब से लगा लो, 13 महीनों का रिचार्ज होता था। और अब ये चीज खत्म होने जा रही है। डोंट वरी, जल्दी से ऐसा होने वाला है कि 2026 में ही इसी साल आप लोगों को 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान मिल जाएंगे। अब हुआ कैसे ये? जो टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उसके अंडर, एक्ट नहीं बोलूँगा रेगुलेशन है, उसके अंडर बोलूँगा, सरकार ने एक बात बोली और उन्होंने बोला है देखो सारी कंपनीज को इसी साल के अंडर 30 दिन के वैलिडिटी वाले प्लान देने होंगे। तो 28 दिन वाले प्लान में क्या होता था, पहले आप 28 दिन का रिचार्ज करो, फिर अगले 28 दिन का रिचार्ज करो। इस हिसाब से टोटल साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ता था। तो अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और इसी के साथ साथ बता दूँ आपको, जिन्हें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है उनके लिए सिर्फ वॉइस और SMS वाले प्लान वैलिड रहेंगे और साथ ही साथ अवेलेबल रहेंगे बोलूँगा मैं। और इस सब चीज़ों की जानकारी जो हमारे सांसद है राघव चड्ढा जी, उन्होंने सोशल मीडिया पर आके ये जानकारी दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया कदम है, क्योंकि लोग ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं 300, 400, 500 कोई लोग ज़्यादा इतने का रिचार्ज करा रहे थे। वैसे 500 रुपये से ऊपर कोई रिचार्ज कराता नहीं है, बट स्टिल काफ़ी सारे लोग करवा रहे थे 13 महीने के रिचार्ज, जो अब घट कर वापस 12 महीने के हो जाएंगे। बट द पॉइंट इज, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में है और वो सवाल वैलिड भी है, क्योंकि क्या पता इनके रेट हाई ना हो जाए, क्योंकि अगर इनके रेट हाई हो गए तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना 12 महीने करने का। बट देखते हैं कब होगा ये और कितने रेट हो जाएंगे इनके, ये तो वक्त बताएगा। मगर उससे पहले

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

वो दिन तो आ ही गए हैं ना जब एसी भी चला रहे हैं और चादर भी ओढ़ रहे हैं और एसी का टेम्परेचर भी 25-26 पे रह रहा है या फिर कुछ लोगों का उससे भी ज्यादा पर टेम्परेचर सेट है, जैसे कि मेरे घर वाले। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 9.6 पर। मैं बहुत सारी बातें कर रहा था इतनी देर से, तो उसी बीच मुझे याद आया कि देखो ठंड कल थी, परसों थी, आज सुबह थी, बट आज रात को होगी या नहीं होगी, क्योंकि आज पूरे दिन भर धूप निकली है और ऐसे ही अब आने वाले दिनों का वेदर रहने वाला है। अब वेदर फोरकास्ट की माने तो अगले आने वाले 7 दिन आपको कोई भी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं पर अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। धर्मशाला के पास बर्फ पड़ गई, अपना जो और भी उससे ऊंचे वाले एरियाज है मनाली से आगे वाले वहाँ पर बर्फ़ पड़ गई। और पहाड़ों पर जब बर्फ़ पड़ती है तो ठंडी ठंडी हवाएं कहाँ पर आती है, दिल्ली एनसीआर में। और अभी दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूँ तो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर वैसे तो 32 डिग्री गया था एंड इट वॉज फीलिंग लाइक 34 से 35 डिग्री, मतलब ठीक ठाक था, झेलने लायक टेम्परेचर था। और आने वाले दिनों में टेम्परेचर जो मैक्सिमम वाला है वो 36 डिग्री तक पहुंच सकता है, मींस कमिंग वीकेंड, जो लॉन्ग वीकेंड जिसे कहा जा रहा है 2 अक्टूबर के बाद। आप लोगों को 36 डिग्री भी फील होगा, हो सकता है वो 40 डिग्री जैसा भी फील कराए। और उसके बाद अगर हम लोग बारिश की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बारिश आएगी, क्योंकि इस साल हम सब जानते हैं कि बारिश बहुत बहुत बहुत कम पड़ी है दिल्ली एनसीआर में, तो खासकर बहुत कम पड़ी है क्योंकि एल नीनो, सुपर एल नीनो, इन दोनों की हमने बहुत बात की। इन दोनों में क्या होता है, मैं जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ फिर से कि सुपर एल नीनो और एल नीनो जो होता है ना, सुपर एल नीनो में होता है कि बारिश, पहले तो बताता हूँ एल नीनो में क्या होता है। एल नीनो में बारिश कम पड़ती है, मानसून वीकर हो जाता है, तो सुपर एल नीनो में और भी ज़्यादा वीक हो जाता है। और ये कहा जा रहा है कि सुपर एल नीनो अगले साल मई तक रहेगा, यानी कि अगले साल की गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी और इस बार सर्दियाँ भी थोड़ी सी जल्दी चली जाएगी। तो देखते हैं क्या ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। और ये एक सीधा सीधा साइन है क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट बदल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। और यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, अमेजिंग बंदा है यार, क्योंकि मैं उसकी बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ भी होगा ना वो बोलेगा तुम लोग ये सब कर रहे हो इस वजह से बादल फट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा, लैंडस्लाइड हो रही है। मैंने कहा भाई तू भी तो मोबाइल चला रहा है, टेक्नोलॉजी तो तू भी यूज़ कर रहा है। कहता हाँ हम इंसान सारे के सारे दोषी हैं। मैंने कहा ठीक है बट इसके लिए कुछ करो तो सही। मैंने कहा पेड़ लगाओ, तो आप लोग भी पेड़ लगाइए और मैं भी पेड़ लगाता हूँ, एंड वी आर ऑल डन, मतलब आई एम डन इस गाने का नाम है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

क्या आपके ऑफिस में भी कोई आपका कलीग है जो बात बात पर छुट्टी कर लेता है और उसको कोई मतलब नहीं है कि उसकी सैलरी कटेगी या नहीं कटेगी और वो छुट्टी करके घूमने निकल पड़ता है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और वक्त है क्या हाल है, इस इंसान से कभी पूछ लो क्या हाल है, वो बोलेगा भाई तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे। और छुट्टी फ्री का एम्प्लॉय कह लो इसको, क्योंकि इससे पूछ लो क्या हाल है, वो ऑफिस कम जाता है, छुट्टी एप्लीकेशन ज़्यादा लिखता है, मंडे को छुट्टी, फ्राइडे को छुट्टी, बीच में ऑफिस बस अटेंडेंस के लिए आता है। आपके भी काफ़ी सारे दोस्त होंगे जो ऐसे करते होंगे, उससे बॉस पूछ लेना कि कल आ रहे हो, बोलेगा सर कैलेंडर चेक करना पड़ेगा, एक बार कैलेंडर चेक करके बताता हूँ। और इसकी लीव बैलेंस देखकर एचआर भी बोलते हैं भाई तू जॉब करता कब है, क्योंकि तू आता कब है ऑफिस। और हर ऑफिस में ऐसा एम्प्लॉय ज़रूर होता है, आपकी ऑफिस में भी ज़रूर होगा। और ऑफिस में इसका फेवरेट डे पता है कौन सा होता है, सोचो ज़रा, संडे, क्योंकि लीव अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं होती। और इसके अलावा ये बंदा छुट्टी मांगने के रीजंस मतलब ढूंढता नहीं है, इसके पास ऑलरेडी रीजंस इतने हैं कि एचआर को लगता है कि घर में हॉस्पिटल चला रहा है। कभी बोलेगा ये बीमार है, कभी बोलेगा वो बीमार है, कभी बोलेगा मैं खुद बीमार हूँ, कभी बोलेगा छोटा भाई बीमार हो गया, कुत्ता बीमार हो गया, ये किसी को भी बीमार कर सकता है। और आप सभी को बता दूँ, सुबह अलार्म ऑफिस के लिए नहीं, बॉस को छुट्टी का मैसेज भेजने के लिए लगाता है ये। और इससे कभी पूछ लो भाई क्या हाल है, बोलेगा यार अटेंडेंस लगानी थी ऑफिस में, कैसे करें। और इसकी अटेंडेंस देख के ना लगता है कि एम्प्लॉय नहीं है, गेस्ट फैकल्टी है, क्योंकि गेस्ट लोग ही तो आते हैं ऐसे। और ये एक दिन ऑफिस जाता है, अगले दिन रिकवरी के लिए छुट्टी ले लेता है। और ये काम से ज़्यादा तो सर आज लीव चाहिए इस चीज़ का बोलने का इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आपके भी काफ़ी सारे दोस्त होंगे।

ये जो ऐसी ऐसी हरकतें करते होंगे, तो उन लोगों के बारे में आप लोगों के मन में भी बहुत सारी चीज़ें आती होंगी कि यार ये इंसान छुट्टी कैसे मांग लेता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इन लोगों की छुट्टी अप्रूव भी हो जाती है। वहीं पर आप अपनी छुट्टी मांगने जाओ एक बार, आपके बॉस मजाल है छुट्टी दे दे। तो सब लोग भुगत भोगी है, सब लोग परेशान हैं इन सब चीज़ों से, बट परेशानी का दूसरा नाम ही जिंदगी है और जिंदगी का दूसरा नाम ही परेशानी है। इन सब चीज़ों को भुलाएंगे और गानों के साथ रेडियो महारानी पर आगे बढ़ते चलेंगे। गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ, बातें और गाने ही चलते रहेंगे मेरे दोस्त। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

क्या आपको पता है बहुत सारे गाने ऐसे भी हैं जो इंडिया से सिर्फ उनकी ट्यून्स ली गई थी और उन गानों ने ग्रैमी भी जीत लिया। ग्रैमी तो आप लोगों को पता होगा, जैसे फिल्मों का ऑस्कर होता है वैसे ही गानों का ग्रैमी होता है। और एक बार हनी सिंह ने भी गाना बनाया था, दुआ करो एक दिन ग्रैमी ले आऊंगा, देसी घी का लड्डू शक्करपारे बटवाऊंगा। और ये वक्त हो चुका है आप सभी के लिए म्यूजिक को डीकोड करने का। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। वक्त हो चुका है म्यूजिक को डीकोड करने का। एंड म्यूजिक डीकोड करते करते मेरे मन में ये सवाल आया कि क्यों ना ऐसे गाने ढूंढे जाए जिन्होंने बॉलीवुड में बन चुके थे जो, और उसकी धुन को लिया गया हॉलीवुड में और फिर उसके बाद ग्रैमी भी जीत लिया गया। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है। ब्लैक आइड पीज एक बैंड है, उन्होंने एक गाना यूज़ किया और वो था कल्याण जी आनंद जी का धुन पे बनाया हुआ गाना, मतलब डॉन मूवी के लिए गाना बनाया था उन्होंने, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना यार का दीवाना जो भी गाना है। तो इस गाने को, और इसके अलावा एक और गाना था ए नौजवान सब कुछ यहाँ, अपराध मूवी का ये गाना है। तो इन दोनों गानों का मिक्स करके एक इंग्लिश गाना बनाया गया, डोंट डैश विद माई हार्ट। और इस गाने की धुनों को मिक्स करके जब ये गाना बना तो इस गाने ने ग्रैमी अवार्ड भी जीत लिया। सोचिए, इंडिया से गाने चुरा रहे हैं ये लोग और ग्रैमी अवार्ड जीत रहे हैं। और इसके अलावा एक गाना है टॉक्सिक, ब्रिटनी स्पेयर्स का। इन्होंने स्ट्रिंग्स और वायलिन की बीट एक बहुत ही बहुत ज़्यादा फेमस गाने से ली थी। उस गाने का नाम है तेरे मेरे बीच में, फिल्म थी एक दूजे के लिए, बहुत पुरानी फिल्म थी। उस गाने से इन्होंने सिग्नेचर ट्यून उठाई और ग्रैमी विनिंग गाना बना दिया। सोचो, इंडिया के गानों से ग्रैमी जीत रहे हैं ये लोग। और इसके अलावा एक और गाना था जो था एडिक्टिव, वो लिया गया था थोड़ा रेशम लगता है, लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना था। तो इस गाने को म्यूज़िक जो था वो भोपी लहरी ने कंपोज़ किया था, और फिर बाद में बहुत बड़ा कॉपीराइट इशू भी हुआ था जिसमें इंडिया वालों ने क्लेम किया था कि इन्होंने हमारा पूरा ट्यून कॉपी किया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले कॉपी करते, बाहर वाले भी हमारे गानों को कॉपी करते हैं और ग्रैमी तक जीत लेते हैं। तो ये था आज का म्यूज़िक डीकोड, और इसी के साथ साथ आप

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

0: सकता है कि आपके पास एक फोन आए और बोले, सर मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपने जो लोन के लिए अप्लाई किया था वो लोन सक्सेसफुल हो चुका है, क्लियर।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: मतलब इतना सा है कि आपके पास कॉल आएगा और बोलेंगे कि लोन अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाने वाला है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ गौरव आपके साथ। एंड जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, कॉल आएगा किसी बंदे का या किसी लेडी का, वो बोलेंगे आपको कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, हम बैंक रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपका लोन सैंक्शन हो चुका है, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग इस भेजे हुए लिंक पे क्लिक कीजिए, अपनी कुछ डिटेल्स फिल कीजिए और आपके पास आपका लोन अमाउंट आ जाएगा। अब वो लिंक में होगा सबसे बड़ा ट्विस्ट, यानी कि आप लोगों को फंसाया जा सकता है। उस लिंक में आपकी सारी डिटेल्स भरवा ली जाएगी और जब बोलेंगे कि हम किसी भी बैंक से बात कर रहे हैं, मान लेते हैं एक्स वाई जेड बैंक का नाम है, वो एक्स वाई जेड बैंक की वेबसाइट भी बनी होगी, बिल्कुल ऑथेंटिक लगेगी। और आप जब उसमें सारी डिटेल्स भरेंगे तो उसमें आपको बोला जाएगा कि अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए, अपना डेबिट कार्ड आईडी डिटेल सब कुछ डाल दीजिए। यहां पर ही ट्विस्ट है कि कभी भी बैंक आपसे ओटीपी सीवीवी नहीं मांगता, तो सीवीवी तो गलती से भी मत दीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज़ें कभी भी मत करिए, मतलब किसी भी कॉल पर विश्वास मत कीजिए। और अगर आपका बैंक लोन अप्रूव होने वाला है ना, जैसे आप लोगों ने कहीं अप्लाई कर रखा है, तो फिर बैंक रिप्रेजेंटेटिव से ही बात कीजिए, यानी कि बैंक में जाकर बात कीजिए और जो भी आपका आर एम मीन्स रिलेशनशिप मैनेजर, उनसे बात कीजिए कि क्या हुआ मेरे प्रोसेस का, लोन प्रोसेस का। नहीं तो कोई कॉल आती है और बोलते हैं इस लिंक को क्लिक कीजिए, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उनके भरोसे पे नहीं रहना है, क्योंकि आप सभी के साथ हो सकता है एक अच्छा खासा फ्रॉड। और ऐसे ही बहुत सारे टाइप के फ्रॉड्स फरीदाबाद में बहुत देखने को मिल रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया तो ना जाने कितने सारे फ्रॉड्स देखने को मिल रहे हैं, तो सोचिए जरा इसके बारे में। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए गाने खूब सारे चलते रहेंगे।

0: बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा, पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे।
1: मैं माझी चाशनी तू माझी खास, मी तुझा समर्थक उद्या पण आज भी, बोले लो किस्मती बोले आज।

कभी आप लोगों ने सपने में अपने आप को फेमस होते हुए देखा? मतलब आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो, सब दुनिया आपको जानती है और सब आपके सामने हाथ हिला रहे हैं, हेलो हेलो हेलो। ऐसे सपने ना हमेशा साइकोलॉजी, हमारी जो डिजायर्स होती है, ख्वाहिशें जिन्हें हम लोग कहते हैं, या फिर रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े होते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं गौरव आपके साथ। एंड देखो, सपनों की जब हम लोग बात करते हैं तो वैसे तो इस टाइम हम लोग सपनों को डिकोड करते हैं रोज, तो सपनों की जब भी हम लोग बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सच ही हो जाए, बट जरूरी ये भी नहीं कि वो सच ही ना हो। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप कभी देखते हो अपने आप को सपने में कि आप बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो चुके हो, लोग आपको जानते हैं, तो मतलब यही है कि आपकी लाइफ में आपको चाहत है कि आपको हर चीज़ में अप्रिसिएशन मिले और इसके अलावा तारीफ की चाहत है आपके अंदर, या फिर वैल्यू, आपकी कहीं पर वैल्यू नहीं हो रही ना, तो ये सपना दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट और स्पेशल महसूस करना चाहते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है, अपने ऊपर आपको भरोसा होगा अगर, तो ऐसे ही सपने आपको देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे अंदर कुछ बड़ा करने की काबिलियत है और आपका सक्सेस की तरफ एक कदम और हो जाएगा। यानी कि आप अपने गोल के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कामयाबी पाने के लिए आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे कह सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, काफ़ी सारे लोगों को ना पूरी ज़िंदगी भर अटेंशन मिलती ही नहीं है, वो या तो अकेलापन फील करते हैं या फिर इग्नोर महसूस करते हैं, तो ऐसे सपने ये भी दिखाते हैं कि आप भी शायद ये सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं। अब देखो, सपने के सिचुएशन के हिसाब से मतलब होते हैं। अगर आप फेमस होकर खुश थे तो ये पॉजिटिव साइन है, ये दिखा रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। और इसके अलावा अगर आप फेमस होकर भी दुख थे, परेशान थे या फिर डरे हुए थे, तो मतलब यही है कि आपको रियल लाइफ में भी लोगों के जजमेंट से डर लगता है। तो देखो, कभी भी पब्लिक फियर तो होना ही नहीं चाहिए। ये बात आप सभी को मैं बोल रहा हूँ जिसको सबसे ज़्यादा पब्लिक फियर है, तभी तो माइक

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आरजे गौरव इन द हाउस, प्यार से रेडियो को गौरव बोलते हैं, एंड एके आका आकानी एके जिम ब्रो, रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है। काफी बार ऐसा होता है ना, हम लोग जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं और हल्की सी इंजरी हो जाती है, बैक में पेन आ गया, कंधे में पेन आ गया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अरे कोई नहीं ठीक हो जाएगा और कर लेते हैं, बाम लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उससे दिक्कत बढ़ सकती है। तो आप सभी के साथ जिम ब्रो है और जिम ब्रो आप सभी को कुछ बताना चाहते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, पेन के थ्रू हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और उस मूवमेंट को तो बिल्कुल नहीं करना है जिससे इंजरी हुई है। और एक सेट करके देख लेता हूँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको कि एक सेट करके देख लेता हूँ, क्या पता इंजरी अब ठीक हो गई हो, नहीं नहीं नहीं नहीं, जब तक पेन पूरी तरह से नहीं जाता तब तक आपको ये सब नहीं करना है। और इसके अलावा इंजरी को कंपेंसेट करने के लिए फॉर्म ख़राब करने वाला वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना, जिसमें फॉर्म ख़राब हो जाएगी तो और भी ज़्यादा इंजरी हो सकती है। और पेन किलर्स लेकर पेन को मास्क करके हैवी ट्रेनिंग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और सिर्फ इसलिए सेम रूटीन पर वापस मत जाना क्योंकि पेन थोड़ा कम हो गया है, जब तक पूरी रिस्ट नहीं मिल जाता तब तक बिल्कुल भी हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। अब देखो पहले क्या करना है, पहले इंजरी की आपको

तब आप रेस्ट लीजिए, रेस्ट से भी ये पेन सबसाइड कर जाएगा। और ये थी आज की जिम्ब्रो की एडवाइस, और ऐसी ही ढेर सारी एडवाइस लेकर आता रहूंगा। इसके लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूँ गौरव आपके साथ।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: My like it too.
5: Awesome. East Punjab.

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

सच सच बताना, मतलब पहले तो अपने आप को बताओ कि कैसा रहा आपका दिन। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हमारा दिन अच्छा नहीं होता, बट हम फिर भी बोल देते हैं बस भाई सब बढ़िया ही गया है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ, रेडियो महारानी 89.6 पर। आज हमने बहुत सारी बातें कर ली, और उसी बीच मैंने बात करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि फरीदाबाद में कूड़ा फैल रहा है। थोड़ी देर पहले क्या, मैं ऑलमोस्ट हर वीक इस बारे में बात करता हूँ। अब सफाई कर्मचारी सफाई करके जा रहे हैं, बट काफ़ी सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पर लोगों की कंप्लेंट्स आ रही है कि हमारे यहाँ पर तो सफाई हो ही नहीं रही है। तो आप लोगों के पास MCF हेल्पलाइन नंबर गूगल पर जाइए, ढूंढिए, MCF की एक ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पर क्या होगा, जब आप कंप्लेंट डालेंगे ना तो आपको एक असाइन किया जाएगा एक पर्सन, और उनका नंबर भी आ जाएगा, और आपके जो कंप्लेंट का स्टेटस है वो भी आपको वहीं पर दिख जाएगा। तो ऐसे कंप्लेंट डाल के एक बार देखिए, क्या पता साफ होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता उसके बावजूद भी, तो CM विंडो हेल्पलाइन आपके पास है, CM विंडो पे जाइए, वहाँ जाके आप कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। और उसके अलावा ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है आपके पास, आप उस पर कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, आप लोगों की सुनवाई ज़रूर होगी। और इसके अलावा फरीदाबाद में तो काफ़ी सारी जगह ऐसे बन चुकी है जो कि हॉटस्पॉट है फॉर ट्रैफिक, और ट्रैफिक तो अब आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है क्योंकि फेस्टिविटीज़ आर हेयर। अभी बस 20 दिन बाद क्या है, रामनवमी, और फिर उसके बाद दशहरा, दशहरा के बाद करवा चौथ है, करवा चौथ के बाद दीपावली है, दीपावली में तो फिर सबको पता है गिफ्टिंग सीज़न है। और मुझे लगता है 31 अक्टूबर से लेके 8 या 9 नवंबर तक बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलने वाला है इस बार दिल्ली NCR में। चलिए वो तो वक्त बताएगा, और वक्त तो ये भी ये बता रहा है कि मेरा हो गया यहाँ से जाने का टाइम, 9:10 है और मैं निकलता हूँ यहाँ से। इजाज़त लेता हूँ आप सभी से, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। वापस आएगी गीत विदेश कुवाजिया, तब तक के लिए आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर। दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता।

कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में ना इतने गहरे उतर जाते हैं कि उनके बाद ये सवाल नहीं रहता कि हम उन्हें भूल पाएंगे कि नहीं। सवाल ये होता है कि उनके बिना जीना सीखने में कितना वक्त लगेगा। और शायद प्यार की सबसे मुश्किल घड़ी यही होती है जब इंसान चला जाता है लेकिन उसके साथ बिताई हुई जिंदगी जाने से मना कर देती है, है ना। वेलकम टू इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके रात के इस हिस्से में जहाँ हम मिलते हैं इश्क शायराना में, जहाँ शायरी किसी शायर के अल्फाजों में नहीं होती बल्कि उन लोगों की आवाजों में होती है जो अपनी फीलिंग्स को ठीक से समझा नहीं पाते हैं। तो आज की रात का एक शेर है, एक समंदर है जो मेरे काबू में है और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, एक उम्र जो बितानी है उसके बगैर और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी किसी के बिना जीने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उसके बिना एक शाम बिताना मुश्किल हो जाता है। हम फ्यूचर के बड़े बड़े फैसले लेते हैं लेकिन प्रेजेंट का एक छोटा सा खालीपन हमसे सहा नहीं जाता। शायद इसीलिए मोहब्बत मुश्किल नहीं होती, मोहब्बत के बाद बची हुई जिंदगी मुश्किल होती है। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत। तो आज की रात बात करेंगे उसी खाली जगह की जो किसी के जाने के बाद सिर्फ दिल में नहीं पूरी जिंदगी में बन जाती है। स्टे ट्यून्ड, अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
1: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। राज भी जमेगा

आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और आज का शेर कहता है, एक उम्र जो बितानी है उसके बगैर और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। कितनी आसानी से कह देते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन कुछ लोग वक्त के साथ कम नहीं होते, वो बस हमारी आदतों में शामिल हो जाते हैं। उनके बिना जीना पॉसिबल तो होता है लेकिन नेचुरल नहीं लगता। और यही फर्क है किसी की कमी और किसी की जगह में। कमी पूरी हो सकती है लेकिन जगह नहीं। कुछ लोग चले जाने के बाद भी हमारी जिंदगी में मौजूद रहते हैं, बस उस पल में जहाँ हम सोचते हैं अगर वो होता तो शायद ऐसा होता। और शायद यही प्यार है, किसी को अपने पास रखने की जिद नहीं बल्कि उनके बिना भी उसकी मौजूदगी का महसूस होना। स्टे विद मी, अब ये गाना और उसके बाद बात उस खतरे की जिसे संभालना सबसे मुश्किल होता है। मैं आपके साथ गीत हूँ।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, hamari daily diet mein nutrition balance maintain karna kyun zaruri hai? न्यूट्रिशन और फूड हमारी लाइफ का बेसिक फ्यूल है. अगर हम सही अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएंगे, सही क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी का बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत ज़रूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन. एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेज का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है. डॉक्टर कॉलिंग.

वेलकम बैक टू इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और कहते हैं ना कि एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, और शायद यही लाइन सबसे ज्यादा सच है, क्योंकि जिंदगी का पूरा समंदर हम पार कर लेते हैं लेकिन किसी एक इंसान की याद का एक छोटा सा कतरा हमें डुबो देता है। हम मुश्किल वक्त से निकल आते हैं, लोगों के बदल जाने को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी बदल लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात, एक नाम, एक एहसास, और हम वही लौट जाते हैं जहाँ से निकलने में हमें साल लग गए थे। शायद इंसान मजबूत होता है लेकिन दिल हमेशा नहीं, और शायद यही हमारी सबसे खूबसूरत कमजोरी है कि हम पूरी दुनिया संभाल सकते हैं लेकिन जिस इंसान को

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

तो आज की रात जाते जाते बस इतना कहना, हम सबकी जिंदगी में शायद कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके बिना पूरी उम्र बिताई जा सकती है, लेकिन कुछ लम्हे नहीं। और शायद यही मोहब्बत की सबसे बड़ी सच्चाई है। प्यार हमेशा साथ मिल जाने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार ये भी है कि इंसान आपके साथ नहीं है, फिर भी आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसी के नाम है। हाँ, वक्त गुजर जाता है, उम्र भी गुजर जाती है, लोग भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लम्हे वक्त के साथ पुराने

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी कभी ना सबसे खूबसूरत लव स्टोरी वो होती है जिसके बारे में दुनिया को कम पता होता है। ना कोई फिल्मी डायलॉग, ना कोई ग्रैंड प्रपोजल, बस एक इंसान दूसरे इंसान को याद करता है और अपनी वो याद एक कागज पर लिख देता है। वेलकम टू इश्क बाजियां, मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेकंड सेगमेंट रेट्रो इश्क, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज की कहानी किसी सुपरस्टार की नहीं, आज की कहानी है धीरू मिस्त्री और कुसुम की। 1966 में धीरू की सगाई कुसुम से हुई। कुसुम अहमदाबाद में थी और धीरू वडोदरा में। उस टाइम ना व्हाट्सएप था ना वीडियो कॉल, और रेगुलर फोन कॉल भी कोई आसान चीज नहीं थी। तो दोनों ने कुछ ऐसा रास्ता चुना जो शायद आज बहुत पुराना लगता है, और वो रास्ता था चिट्ठियाँ, यानी कि खत। एक लेटर गया, फिर उसका इंतजार, फिर जवाब आया, फिर अगले जवाब का इंतजार, और धीरे धीरे ये लेटर्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहे, ये दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। 1967 में दोनों की शादी हो गई, लेकिन मोहब्बत की वो चिट्ठियाँ बंद नहीं हुई, क्योंकि कुछ रिश्तों में बात करना जरूरत नहीं होता, एक दूसरे की जिंदगी में बने रहना जरूरी होता है। तो आज की रात हम इसी छोटी सी मगर बहुत गहरी सी मोहब्बत की कहानी सुनेंगे रेट्रो इश्क पर। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में मिलते हैं उन चिट्ठियों के साथ जिन्होंने दो लोगों के बीच की दूरी को छोटा कर दिया। आप बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

स्वागत है उस मोहब्बत की कहानी में जहां आई मिस यू लिखने के लिए कोई टाइपिंग बॉक्स नहीं था, पूरा एक कागज हुआ करता था। धीरू और कुसुम की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद शादी के बाद भी चलता रहा। धीरू काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे और जब दूरी बढ़ती थी तो एक चिट्ठी दोनों के बीच का ब्रिज बन जाती थी। धीरू बताते हैं कि जब कुसुम की चिट्ठी आती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनके सामने बैठकर बात कर रही हो। सोचिए, आज हमारे पास किसी को याद करने के लिए बस एक सेकंड लगता है, एक मैसेज, एक कॉल, एक वीडियो कॉल, लेकिन उस दौर में किसी की आवाज़ सुनने से पहले शायद कई दिन इंतजार करना पड़ता था और फिर भी लोग रिश्ते निभाते थे। कुसुम चिट्ठियां भेजती, धीरू उन्हें पाने का इंतजार करते, कभी उन्हें लेने के लिए मुंबई तक जाना पड़ता। आज हम कहते हैं रिप्लाई नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। उस दौर में रिप्लाई आने में दिन लग जाते थे और फिर भी प्यार कम नहीं था। शायद फर्क टेक्नोलॉजी में नहीं था, फर्क पेशेंस में था। उन दोनों ने 58 साल साथ बिताए और धीरू के पास आज भी उन दोनों के बीच के एक्सचेंज्ड 1000 से ज्यादा हैंड रिटन लेटर्स हैं। कुछ लोग मेमोरीज को फोटोग्राफ्स में रखते हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत को कागज पर संभाल कर रखा और अब इस खूबसूरत एहसास के साथ एक खूबसूरत गाना हो जाए। स्टे ट्यून्ड रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रेट्रो इश्क में कहानी अभी बाकी है।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर किसी रिश्ते की असली कीमत जाननी हो तो उसके ग्रैंड मोमेंट्स मत देखिए, उसकी छोटी छोटी आदतें देखिए। कौन किसकी चिट्ठी का इंतजार करता था, कौन किसकी पसंद याद रखता था, कौन दूर होकर भी दूसरों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए रखता था। धीरू और कुसुम की कहानी में रोमांस कुछ ऐसा ही था। उनकी मोहब्बत कोई एक बहुत बड़ी घटना नहीं थी, वो सैकड़ों हजारों बातों से बनी थी। एक लेटर में शायद दिन भर का हाल था, कहीं कोई छोटी शिकायत, कहीं कोई याद, और शायद कहीं बस इतना ही, आज तुम्हारी बहुत याद आई। और यही तो प्यार है ना, हर बार आई लव यू बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी बस ये पूछ लेना, खाना खा लिया, दूर रहकर भी दूसरों की जिंदगी में मौजूद रहना। और सबसे खूबसूरत बात कि शादी के बाद भी उन्होंने लेटर्स लिखना छोड़ा नहीं था। 58 साल साथ रहने के बाद कुसुम चली गई, लेकिन उनकी आवाज उन कागजों में रह गई। आज धीरू उन लेटर्स को अपने पास संभाल कर रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें पुरानी नहीं होती, स्याही फीकी पड़ सकती है, कागज पीला हो सकता है, लेकिन जिस इंसान ने वो शब्द लिखे थे उसकी याद कभी पुरानी नहीं होती। और शायद इसी को कहते हैं मोहब्बत का बचे रह जाना। और अब कुछ देर के लिए इन शब्दों को खामोश करते हैं और म्यूजिक को बोलने देते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इश्क बाजिया में।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल

ये थी आज की रेट्रो इश्क की कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई क्लाइमेक्स नहीं था, बस दो लोग थे, दो शहर थे, कुछ दूरियां थी, उन दूरियों के बीच आती जाती चिट्ठियां थी, धीरू और कुसुम। रेट्रो इश्क में कहानी थी धीरू और कुसुम की। आज कुसुम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन धीरू के पास उनकी लिखी हुई पूरी एक दुनिया है, हजार से ज्यादा लेटर्स की दुनिया, और शायद यही बात इस कहानी को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाती है। हम अक्सर कहते हैं काश वो वक्त वापस आ जाए, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। हाँ, उसकी कुछ निशानियां रह जाती हैं किसी पुरानी तस्वीर में, और शायद प्यार की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन यही है, इंसान चला जाए लेकिन उसकी

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जलसे भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी अगर आप सिचुएशन

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता।

गाने के साथ स्वागत है शो है इश्कबाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है, और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना, यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपके इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए, जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है, और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों की रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए, जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा। Thank you.

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल

तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।